सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास के 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे,

0: शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और

0: ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय सुभद्रा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे इस माह में बोई जाने वाली पुष्प और सुगंधित फूलों की खेती विषय पर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय।

भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें के साथ आज आपका रेडियो दोस्त संजीव हाजिर है। आज हम इस माह में की जाने वाली पुष्प एवं सुगंधित फूलों की खेती विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जुलाई का महीना मानसून का समय होता है, जो भारत जैसे खासकर झारखंड क्षेत्र के लिए फूलों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान वातावरण में नमी और बारिश का पानी पौधों की अच्छी वृद्धि और रोपाई के लिए वरदान साबित होता है। किसान भाइयों, आइए जानते हैं इस मौसम में की जाने वाली फूलों की खेती के बारे में। सबसे पहले हम व्यावसायिक पुष्प गेंदा की बातें करते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए ये सबसे लोकप्रिय फूल है, जो जुलाई में इसकी नर्सरी की जाती है और इसकी नर्सरी तैयार भी की जाती है। आप इनके पौधे भी लगा सकते हैं और इसी माह में आप ये कार्य कर सकते हैं। इस फूल का उपयोग सजावट, माला बनाने और सुगंधित तेल या इत्र बनाने में भी किया जाता है। और अब हम गुलदाउदी की बात करते हैं। ये शरद ऋतु में खिलने वाला बेहद खूबसूरत फूल है। इसे जुलाई अगस्त में कटिंग कर इसके कलम को गमलों में लगाया जाता है। इसका उपयोग सजावट और इत्र उद्योग के लिए बहुतायत किया जाता है। और अब हम ग्लेडियोलस की बात करते हैं। ये फूल को जुलाई के महीने में कंद के रूप में लगाया जाता है। ये कट फ्लावर होता है, जिसकी मांग मार्केट में अच्छी होती है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। आइए अब हम रजनीगंधा की बात करते हैं। इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है और इसके कंद लगाने का यही सही समय है। इसका उपयोग भीनी खुशबू के लिए किया जाता है। इसके खुशबू से गुलदस्ते, इत्र और सजावट के सामान अक्सर सजाए जाते हैं। किसान भाइयों, यदि हम सुगंधित फूलों की खेती की बात करें तो इस श्रेणी में पहला नाम आता है मोगरा और जैस्मिन की। जी हाँ, इसकी खेती के लिए बरसात के मौसम में ही इसकी कटिंग होती है और ये तेजी से पनपती भी है। इसमें बहुत तेज और भीनी खुशबू होती है। इसी श्रेणी में हम बात करते हैं जूही और चमेली का भी, जिसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो गर्मी और बरसात के मौसम में खिलने वाले सुगंधित

साथ ही सुगंधित फूलों की खेती की श्रेणी में अगर हम गुलाब का नाम ना लें तो बेमानी होगी, इसका भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसमें गुलाब के संकर किस्म की कलमें लगाई जाती है जुलाई के महीने में, और जुलाई का महीना इसके लिए उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम में खेती की बातें कार्यक्रम में ये जाना कि जुलाई के माह में हमारे किसान भाई कौन कौन से पुष्प लगा सकते हैं और इसका व्यावसायिक तौर पर वो प्रयोग करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसी जानकारी के साथ हम आज लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ इसी कार्यक्रम में। तो सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

आज का चिंतन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार आपका दिमाग ही आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी इस मान्यता, इस सच्चाई को बदल नहीं सकती।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:16 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले श्रोताओं सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

आपने सुना बेला सुलाखी और साथियों के सरों में ये भक्ति गीत। अब आइए सुनवाते हैं चंद्रो आत्मा के स्वर में भक्ति रचनाएं।

श्रोताओं, चंद्र आत्मा के गाये भक्ति गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग लोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देव लोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। यही आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिन से व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। 7:20 का समय होगा लोकगीतों का और 7:35 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 का हमारा समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का हमारा समय होता है प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम आपके साथ होंगे फिल्म संगीत लेकर। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरंजना में एक ही गायक को। 9:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर हम आपके साथ होंगे फिल्म संगीत लेकर। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी और दोपहर 12:05 पर आप सुन सकते हैं भावगीत। 12:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। दोपहर के 1:20 और 2:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3:00 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे आशा भोसले और सुजात खान की आवाज में गीत। 3:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। संध्या 4:00 एवं 5:00 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर आकाशवाणी दिल्ली से। 5:02 का समय होता है युवा साथियों का, आप सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 का समय होता है झारखंड के लोकगीत का। 6:30 पर आप सुनते हैं कृषि जगत। संध्या 7:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा और संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनेंगे खेल कार्यक्रम और रात्रि 8:00 हम आपके साथ होंगे फिल्म संगीत लेकर। 8:45 पर श्रोताओं आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या और यहीं से प्रसारित किया जाता है रात्रि 9:00 न्यूज़ एट नाइट, 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10:00 आज आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एगम एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 10:30 पर ICC महिला T20 विश्व कप के अंतर्गत द ओवन लंदन में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरा सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। श्रोताओं, अब आइए सुनवाते हैं आपके पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम

0: हम आप और हम धरा की खामोशी को मिटाने बारिश की बूंदें गिरती हैं और नई ऊर्जा एवं चेतना जगाते हुए प्रकृति में एक संगीत का स्वर लहरी खोल देती हैं। तरंगों की मिठास जब मानव मस्तिष्क तक पहुंचती है तो मानव जीवन का भी नौ श्रृंगार होता है और जीवन के श्रृंगार के लिए रेडियो का साथ एक अहम भूमिका निभाता है। ये भूमिका तब पूर्ण होती है जब आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप और हम के साथ आपके पत्र और मेल का जवाब दिया जा रहा होता है। निमिषा की प्यार भरे नमस्कार के साथ शुरू करते हैं आज का आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम अधिशासी राजीव रंजन तिवारी। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार निमिषा जी, और सभी सुनने वाले प्यारे प्यारे श्रोताओं को राजीव का नमस्कार।
0: राजीव जी, जैसा कि हमारे पास आज भी कई खत और मेल आए हुए हैं, इसमें से मैं बिना समय गवाए ले रही हूँ पहला मेल।
1: जी जरूर।
0: और ये मेल आया हुआ है सिजू लता नियर नवोदय स्कूल से भारती शुक्ला जी का।
1: जी।
0: भारती जी लिखती हैं, आकाशवाणी के तमाम बंधुओं को मेरा प्रणाम। आगे इन्होंने जिक्र किया है अपने मेल में, मैं एक कामकाजी महिला हूं और अपने जीवन में रेडियो को एक अहम स्थान देती हूं। 90 के दौर से मैं लगातार रेडियो सुनती आ रही हूं। कार्यक्रमों को सुनना इतना रोचक लगता है कि भावनाओं को परिभाषित नहीं किया जा सकता, फिर भी शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आकाशवाणी जमशेदपुर को मैं काफी लंबे समय से सुनती आ रही हूँ और हर तरह के कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन अपने आप में निराला होता है। रेडियो के ध्वनि तरंग हमारे कानों को सुकून तो देते ही हैं, साथ ही हमारे मन स्थिति भी काफी सृजनात्मक एवं ऊर्जावान हो जाता है। कैसे कहूँ कि रेडियो हमारे दिल में धड़कता है। इतना ही नहीं, ये तो ज्ञान का खजाना भी है जो हर रोज बढ़ता जा रहा है। मैं हृदय तल से आप सभी रेडियो वालों की आभारी हूँ। मन में रेडियो के प्रति कुछ भावनाएं आ रही थी जो मैंने अपनी चिट्ठी में उकेरा है, उम्मीद करती हूँ इसे आप जरूर शामिल करेंगे, धन्यवाद।
1: भारती जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया और अपनी भावनाओं को उजागर किया। रेडियो सचमुच में 90 से जब से आकाशवाणी जमशेदपुर की शुरुआत हुई है, तब से आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और आप जैसे लिसनर्स हमारे स्तंभ हैं और हमारी मजबूती का सबसे बड़ा आधार है। भारती जी, जिस तरह से आपने रेडियो का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे आप लोगों के लिए कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, जिसमें फिल्म संगीत से लेकर बहुत सारे स्पोकन वर्ड के भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आप लोगों को किसी न किसी तरह से लाभान्वित करते हैं। तो इसी तरह आप रेडियो से जुड़े रहिए, रेडियो को सुनते रहिए और आकाशवाणी के साथ हमेशा संपर्क बनाए रखिए। आप आगे भी हमें मेल करते रहिए और आपके मेल को हम लोग कोशिश करेंगे कि शामिल कर सके। आपने मेल किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
0: भारती शुक्ला जी के इस मेल के बाद अब बारी आती है एक चिट्ठी की, और ये चिट्ठी आई हुई है कदमा से हरजोत कौर जी की। हरजोत जी लिखते हैं, आप सबको नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: और आगे उन्होंने लिखा है, मैं रेडियो की पुरानी श्रोता हूँ, तकरीबन 34-35 सालों से रेडियो सुनती आ रही हूँ। समय के साथ कार्यक्रम में कई तरह के फेरबदल हुए हैं और ऐसा होना जरूरी समझती हूँ। आपके केंद्र से प्रसारित फरमाइशी गीतों के फोन इन कार्यक्रम में मैंने भी हिस्सा लिया है, अपनी पसंद का गीत भी सुना है और रेडियो पर अपनी आवाज भी सुनी हूँ। जिस तरह से फरमाइशी गीतों के लिए फोन इन कार्यक्रम किया जाता है, ठीक उसी तरह से आपने फोन पर डॉक्टरी सलाह और श्रोताओं की बातचीत का प्रोग्राम शुरू कर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया है।

0: समस्या महिलाओं की हो या फिर डिप्रेशन की, श्रोताओं का डॉक्टर से स्वयं बातचीत कर समस्या के बारे में जानना ये बहुत बड़ी सकारात्मक पहल है। मैंने हेलो डॉक्टर का हर एपिसोड सुना है। यह कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद आ रहा है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि इस कार्यक्रम को महीने में कम से कम 2 बार प्रसारित किया जाता तो अच्छा रहता। धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हरजोत जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हेलो डॉक्टर जैसे कार्यक्रम को सराहा और उसको आप हर एपिसोड उसका आपने सुना है। आपने पिछला अंक भी सुना होगा जब हमारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हरप्रीत सिंह हमारे स्टूडियो आए थे और श्रोताओं से डायरेक्ट फोन इन के माध्यम से जुड़े हुए थे और सारे श्रोताओं को उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। आपका सलाह जरूर हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि हेलो डॉक्टर जैसे कार्यक्रम जिससे श्रोता डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं उसको महीने में कम से कम 2 बार किया जा सके। ये हमारे प्रपोजल में भी है और कोशिश है कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करें। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स के कार्यक्रम है जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य चर्चा, कल्याणी, इस तरह के कार्यक्रम है जहाँ पर डॉक्टर्स लिसनर्स को जरूरी सलाह देते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम है जहाँ पर आप अच्छी सलाह पा सकती हैं। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हरजोत जी, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हरजोत जी के इस चिट्ठी के बाद अब फिर से बारी आती है एक मेल की, और ये मेल आया हुआ है बागबेड़ा जमशेदपुर से प्रवीण कुमार शाह जी का। लिखते हैं, आकाशवाणी के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्रणाम। आगे इन्होंने अपने मेल में जिक्र किया है, मैं रेडियो का नियमित श्रोता हूँ और आकाशवाणी जमशेदपुर के दोनों चैनलों को क्रमशः नियमित रूप से सुनता हूँ। रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम में मुझे खेल से संबंधित कार्यक्रम ज्यादा आकर्षित करते हैं और यकीनन मैं खेल जगत के कार्यक्रम जरा सुनिए आज के मेहमान जैसे कार्यक्रम अवश्य सुनता हूँ। क्रिकेट के अलावा मेरी रुचि बैडमिंटन में भी है और इन खेलों से संबंधित लोगों की वार्ता जब रेडियो पर प्रसारित होती है तब मुझे बड़ा ही रोमांच हो जाता है। गीत संगीत गजल अवश्य ही सुरीले और मधुर होते हैं, वैसे ही मुझे क्रिकेट कमेंट्री और अन्य खेलों से संबंधित कमेंट्री और अपनी बातें बेहद आकर्षित करती हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए मैं तहे दिल से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का शुक्रगुजार हूँ। आकाशवाणी के अधिकारियों से मेरा एक आग्रह है कि खेल जगत के कार्यक्रम रोजाना कम से कम 1 घंटे का प्रस्तुत किया जाए तो हर वर्ग के लोग ऐसे कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।
1: प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपने जो मेल किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आपने जिस तरह से बात की खेल जगत के कार्यक्रम खेल खिलाड़ी की, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जो करंट गेम्स हो रहे हैं उनको शामिल किया जा सके। उसमें अगर बैडमिंटन के भी खेल होते हैं तो उनको भी शामिल करने की कोशिश की जाती है। वैसे आप लोगों के लिए हम लोग ICC के जो टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट के, उनकी लाइव कमेंट्री का भी प्रसारण किया जाता है। जैसे अभी ICC T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का चल, उसका भी कमेंट्री हमारे आकाशवाणी के माध्यम से हो रहा है। और रही बात जरा सुनिए की और आज के मेहमान की, इसमें भी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे चीजों को आप लोगों के सामने पेश करने का, और आखिरी में जब आपने एक सलाह दिया है उस सलाह को हम लोग जरूर उसको कोशिश करेंगे कि अमल करें और प्रत्येक दिन 1 घंटे का ना भी हो तो कम से कम छोटे डोज में या छोटे स्केल में कम से कम रोज 5 मिनट का ही सही बट खेल खिलाड़ी के कार्यक्रम या खेल से संबंधित जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी तो जाता ही है, और आपके सलाह पर हमारे जो कंसर्न्ड पर्संस हैं वो इस पर जरूर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सलाह को इम्प्लीमेंट करें। आपने मेल किया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
0: प्रवीण जी के इस मेल के साथ ही हमें घड़ी का इशारा कह रहा है कि अपने श्रोताओं को चलते चलते कार्यक्रम का पता बता दें।
1: जी जरूर निमिषा जी,
0: जिन श्रोताओं को चिट्ठी लिखनी है वो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम आप और हम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जमशेदपुर। हमारा पिन है 831013। और अगर आप मेल करते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है airjsrcbs@gmail.com। मेल करें, पत्र लिखें। फिलहाल मुझे और राजीव जी को इस साप्ताहिक कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, नमस्कार।
2: आप और हम, आप और हम,
0: अभी आप सुन रहे थे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे हरिवंश प्रसाद सिंह से मगही गीत।

श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सब बातें हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान।

0: चित्रा सिंह के गाए इस आधुनिक गान के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता अस्थमा लक्षण और उपचार विषय पर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुद्र प्रसाद सामंता, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे नवजात शिशु की देखभाल के बारे में। नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए और क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पे कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस विषय पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा चौधरी। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, नवजात शिशु क्या विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है?
2: नवजात शिशु जो है, जिनका जन्म अभी अभी हुआ है, उनकी देखभाल दो कैटेगरी में होते हैं। एक होती है जो इमीडिएट केयर, मतलब तुरंत, वो या तो डॉक्टर्स या फिर नर्सेस के द्वारा दी जाती है। अच्छा। जिसमें है कि जन्म के तुरंत बाद उनको हम तुरंत ड्राई करते हैं, वार्मर के नीचे उनको गर्माहट देते हैं। उसके अलावा हम लोग उनको थोरो जांच करते हैं कि उनको किसी तरह की कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, बाहरी तौर से उनके शरीर के गठन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। उसके अलावा उनके माउथ का, नाभि का, आंख का, सब तरह का क्लीनिंग किया जाता है।
1: ये तो उन लोगों के द्वारा देखभाल का तरीका है जो प्रशिक्षित है।
2: जी बिल्कुल।
1: लेकिन

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा है क्या, किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं और फिर इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुद्र प्रसाद सामंता। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि अस्थमा है क्या।
1: अस्थमा या दमा जो बोलते हैं वो एक बीमारी है जो फेफड़े पे असर करती है। उसमें दोनों फेफड़े में जो सांस की नली होती है वो सूज जाती है और वो पतले होने लगते हैं, जिससे सांस का आदान प्रदान में दिक्कत होने लगता है और मरीज को तकलीफें शुरू हो जाती है। मुख्यतः ये लक्षण जो होते हैं वो होते हैं कि छाती में घगराहट होना, जब वो सांस लेते हैं तो साई साई आवाज होना या सीटी जैसे आवाज होना, ये सब तकलीफें उनको शुरू हो जाती है। मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है और वो चलने फिरने पे हांफने लगते हैं। उनको सीने में जकड़न जैसा भी महसूस होता है या सीना भारी लगता है और इसके साथ उनको खांसी भी होने लगती है।
0: एक सामान्य सा खांसी कैसे अस्थमा में बदल रहा है, आम लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अगर ये सब तकलीफें एक साथ होने लगती है तो ये दमा हो सकता है। तो जिन लोगों को ये सब सांस की बीमारी होती है या उसके साथ खांसी भी होती है या सीने में जकड़न होती है तो वो डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं और जांच के द्वारा ये पता लग सकता है कि दमा है कि नहीं है। जो लक्षण होता है उनका एक पैटर्न होता है, जैसे ये सब लक्षण रात को या सुबह भोर में ज्यादा होता है। उनके लक्षण जो होता है कभी बढ़ सकते हैं या अपने आप घट भी सकते हैं। मौसम के साथ बदलाव के साथ ये बढ़ सकते हैं, सर्दी खांसी के साथ ये बढ़ सकते हैं। तो ये सब लक्षण जो होता है इस सब से आप संदेह कर सकते हैं कि आपको दमा है और डॉक्टर से आप जाके मशवरा ले सकते हैं।
0: दमा का जो अटैक आता है किस मौसम में बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है?
1: मौसम का चेंज जो होता है या बदलाव जो होता है उसमें ज्यादातर ये जो दमा का सिम्टम होता है या लक्षण होता है वो बढ़ते हैं, और सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में ये ज्यादा होता है।
0: तो ये दमा नामक जो बीमारी है ये किसी खास उम्र के लोगों में होता है या फिर किसी भी उम्र के लोगों में?
1: किसी भी उम्र के लोगों के हो सकता है, लेकिन देखा गया है ये बचपन से ही शुरू होता है क्योंकि ये जेनेटिक कारणों से ज्यादा पाया जाता है या अनुवांशिक रूप से। अगर आप आजमा के झुकाव के मतलब के तरफ झुके हैं तब किसी चीज से अगर आपको एलर्जी है तो आपके उसके संस्मरण में आने से आपको ये आजमा जो है वो हो सकती है। ये क्यूरेबल तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, या कंट्रोलेबल डिजीज जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम लोग पूरी तरह से क्योर तो नहीं बोलते हैं लेकिन हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा।

0: ऐसी बीमारी है, तो दवाई लेने से आप ऐसा महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि आपको दमा है।
1: मान लीजिए अगर कोई दमा का शिकार है तो मेडिकली उसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं, किस तरह से उपचार करते हैं?
0: जी, सांस की बीमारी है तो हम लोग ऐसे दवाई देते हैं जो सांस या फेफड़े पर असर करती है डायरेक्ट, हम लोग उनको इनहेलर्स बोलते हैं। ये मुख्यतः दमा या सांस की बीमारी के लिए ही बनाई गई है। जैसे आप किसी घाव या स्किन के ऊपर अगर कोई कुछ कट जाता है तो पहले आप क्या करते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं।
1: जी, जी।
0: फिर उसके बाद अगर ज्यादा बढ़ जाता है तब आप दवाई खाने लगते। वैसे ही जिससे ये फेफड़े में की बीमारी है तो ऐसे दवाई दिया जाता है जो डायरेक्ट फेफड़े में जाता है और फेफड़े पे असर करता है, हम लोग इसको इनहेलर्स बोलते हैं। तो ये मुख्यतः उसका ट्रीटमेंट है। अगर इनहेलर्स से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो उसके बाद हम लोग दवाई खाने के लिए दिया जाता है।
1: अंत में एक सुझाव अस्थमा के मरीज को।
0: सुझाव तो यही है कि अगर आपको ये सब जो लक्षण है अगर आपके पास मौजूद है या आपको डेवलप होता है तो तुरंत इसका उपचार करें, किसी डॉक्टर को जाकर दिखाएं, क्योंकि ये दमा हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं आपने जानकारी प्राप्त किया अस्थमा लक्षण और उपचार विषय पर। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रुद्र प्रसाद सामंता, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे

0: ये आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर

0: ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल

0: शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरन कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड एनुअल समिट विद हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए ताकाइची इन न्यू दिल्ली टुडे। EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26.

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से मौत के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट किया जारी। सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा, राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा किया जा रहा मजबूत, बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा का दिया संदेश। जमशेदपुर में चाकूबाजी कांड में फरार मुख्य आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित, मृतक की पत्नी को मिलेगी नौकरी। राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची पहली बार डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मौत के बाद झारखंड सरकार ने राज्यभर में स्वास्थ्य अलर्ट जारी करते हुए सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए तत्काल व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच, समय पर उपचार तथा गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। अधिक प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य कर्मियों को आरडीटी किट और मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध कराने के साथ कीटनाशक छिड़काव और फॉगिंग अभियान तेज करने को कहा गया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ ही आधुनिक ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कल जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत भंडार बेड़ा उच्च विद्यालय की चहरदीवारी और अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का शिलान्यास किया। श्री महतो ने छात्र छात्राओं से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जंक और फास्ट फूड से परहेज करने की हिदायत दी।
1: कि जो लोग जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं वो कोई भी मेडिकल टेस्ट में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उस फूड को कंजम्पशन करने के बाद शरीर में कुछ कुछ ऐसा बीमारी आ जाता है जो आपको आगे का रास्ता को बाधित। इसलिए हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, चीजों का इस्तेमाल करने से हमारा सेहत के लिए भी अच्छा है।
0: दुमका के सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की गई। सांसद ने योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर मौजूद विधायक वसंत सोरेन ने कहा कि आगे भी कई कार्य योजनाओं पर कार्य होगा।
2: ये सारे फंड किस तरीके से किन किन चीजों में लगाए जा रहे हैं और इनकी जानकारी लेनी आवश्यकता थी, आवश्यक थी कि सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, सुंदर दुमका था भी है भी और आगे के दिनों में और सुंदर बनाने का प्रयास है। काफी सारी योजनाएं अभी दुमका में चल रही हैं और आगे भी कई योजनाओं पर काम होना है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने खूंटी जिले में वर्ष 2013 में पुलिस मुखबिरों की हत्या के मामले में पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन और नक्सली नेता जेठा कच्छप को बरी कर दिया है। साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों के आधार पर दोनों की आपराधिक अपील स्वीकार कर ली गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने जुलाई महीने के लिए नया उड़ान शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत राजधानी से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, पटना और भुवनेश्वर सहित 10 शहरों के लिए नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। नए शेड्यूल के अनुसार रांची से प्रतिदिन 23 नियमित उड़ानों का संचालन होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईडी एसपी एहतशाम वकारिब को जमशेदपुर का एसएसपी बनाया गया है। वहीं मनोज स्वर्गियारी सरायकेला जिले के नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर सरायकेला खरसावा के उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह और कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पुट्टा ने हिमांशु हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अधिकारियों ने परिजनों की मांगे सुनी और मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि मृतक की पत्नी को तत्काल राहत देते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार का ऑफर लेटर सौंप दिया गया है।
3: जो मूल बात यही थी कि जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन पे कार्रवाई करने का था और सबका अरेस्टिंग मिलिट्री करने का उनका रिक्वेस्ट था। इस बार वो लगातार तत्पर है और इसमें यथाशीघ्र उनका अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा था ये जो दिवंगत की वाइफ है उनके इम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामला था, तो जिसमें तत्काल तौर पर हम लोगों ने आउटसोर्सिंग से इनको इम्प्लॉयमेंट का एक ऑफर लेटर दे भी दिया है और बाकी इनकी जो डिमांड है उसको हम लोग यथावत स्टेट को पूरा।
0: दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के बूढ़ी डंगाल गांव में वज्रपात से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। तेज बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई जबकि 1 घायल हो गई। राज्य में मॉनसून मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। झारखंड औसतन 54% वर्षा की कमी झेल रहा है। ऐसे में सुखाड़ की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने भी तैयारी कर ली है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा कि राहत के लिए बीज और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी का निर्देश दिया है।
4: अगर बारिश कम हो तो अपलाइन में हम लोग जो मिलेट्स हैं उसका प्रोडक्शन करें, हॉर्टिकल्चर में जो है क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दें। इसके लिए हम लोगों ने सीड्स का रेट भी फाइनल कर लिया है, कंपनी के साथ ऑर्डर भी दे दिया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो किसानों को तुरंत बीज जो है उपलब्ध हो और वो खेती कर सके। केंद्र सरकार भी इस मामले में पूरी सेंसिटिव है और डीसी भी लगातार हो रही है केंद्र सरकार के साथ।
0: मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। रांची में लीग चरण के मुकाबलों के साथ एक क्वार्टर फाइनल भी खेला जाएगा। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने पारा शिक्षकों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकार सख्त, व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर रोक, केंद्र ने जवाब मांगा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्य में वज्रपात से 5 की मौत, आज से भारी बारिश का अलर्ट। दैनिक जागरण ने लिखा है, ब्रेन मलेरिया को लेकर सभी डीसी को किया गया सतर्क। प्रभात खबर की सुर्खी है, हाई कोर्ट का आदेश, नियमित नियुक्ति से पहले संविदा पर दी गई सेवा भी पेंशन योग्य। और अब अंत में मुख्य समाचार। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से मौत के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट किया जारी। सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा, राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा किया जा रहा मजबूत, बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा का दिया संदेश। जमशेदपुर में चाकूबाजी कांड में फरार मुख्य आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित, मृतक की पत्नी को मिलेगी नौकरी। राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची पहली बार डोरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी, 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और अब आइए सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, पत्तों पर रोज की बूंदें चमक रही है और हवा में वो सौंधी सी खुशबू है जो सिर्फ सुबह की ताजगी ही ला सकती है। ऐसी सुबह दिल के किसी कोने में दबी पुरानी यादों को जगा देती है। यादें जो कभी कागज की कश्ती बनकर हमारे बचपन के आंगन में तैरा करती थी, और कुछ ही यादें बारिश के पानी जैसी होती हैं जो अतीत से बहकर आती हैं और आज को भिगो जाती हैं।

श्रोताओं, प्रकृति से संगीत का अपना ही एक तालमेल है। सुबह की ताजी हवा हो, पेड़ की सरसराहट हो और दिल की धड़कन, सब मिलकर एक अनोखी लय बना लेती हैं। जब जिंदगी की यही लय सही होती है तो हर दिन उत्सव सा प्रतीत होता है। और जब बात लय संगीत और जादू की हो तो जहन में ये गाना बखूबी।

देखिए ना, चारों तरफ एक अजब सी खामोशी है, लेकिन दिल के अंदर भावनाओं का एक समंदर हिलोरे ले रहा है। कहते हैं कि सुबह की जब पहली किरण ज़मीन को छूती है तो वो सिर्फ दिन का उजाला ही नहीं लाती, बल्कि हमारे भीतर छिपे निश्चल और पवित्र प्रेम को भी जगा देती है। एक ऐसा प्रेम जो शब्दों का मोहताज नहीं होता।

0: फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आपने इजाजत ताल और आजा नचले फिल्म के गाने सुने। आवाजें थी आशा भोसले, उदित नारायण, अलका याग्निक और राहत फतेह अली खान साहब की। गीत रचा था गुलजार, आनंद बख्शी और जयदीप सहानी ने। संगीत निर्देशन था राहुल देव बर्मन, ए आर रहमान और सलीम सुल्तान का। इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि

0: आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के हस्तांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर विध्वंस कार्य और धूल उत्पन्न करने वाले खुले निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और ये 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण लिया है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
5: जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नए महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई।
6: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
6: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
6: हेलो डॉक्टर।

श्रोताओं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सीधे ईश्वर का आशीर्वाद लगती हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसने 7 दशकों से भी ज़्यादा समय से संगीत की दुनिया पर राज किया है, जिनकी आवाज़ में भक्ति का भाव भी है और प्रेम की गहराई भी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज के कार्यक्रम सुरंजना में हमारे साथ हैं यशोदास की आवाज़।

श्रोताओं, येशुदास की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव है जो भागती दौड़ती जिंदगी को पल भर के लिए रोक देता है। उन्होंने सिर्फ दक्षिण भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी ऐसे गाने गाए जो हमेशा के लिए अमर हो गए।

दोस्तों यशोदास अपने करियर में 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, और अब जो आपको गीत सुनवाने जा रहे हैं वो एक

ऐसा गीत है जो हर उस इंसान की दास्तां बयां करता है जो जिंदगी के रास्तों पर अकेला चल रहा है। तो आइए सुनवाते हैं यशोदास की ये दर्द भरी आवाज में ये गीत।

0: मधुबन।
1: यशोदास की आवाज से सजा एक ऐसा गीत जो बेहद ही खूबसूरत है। इस गाने में यशोदास ने जो ठहराव और मोहब्बत घोली है वो आज के दौर के गानों में मिलना मुश्किल है। तो सुनिए ये गाना।

आज के कार्यक्रम सुरंजना में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थी चितचोर, छोटी सी बात, साजन बिना सुहागन और टूटे खिलौने। गीतकार थे रविंद्र जैन, योगेश इंदिवर और कैफी आजमी। संगीत निर्देशन था रविंद्र जैन, सलील चौधरी, उषा खन्ना और बप्पी लहरी का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं शास्त्रीय संगीत लेकर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत की आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे राग तोड़ी पर आधारित ख्याल गायन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी पर आधारित ख्याल गायन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य

0: ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The new scheme is aimed to strengthen digital compliance, improve administrative efficiency, enhance portability of accounts, and bring the Provident Fund framework in line with the new labour codes. The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital that will remain in force every year from 1st of November to 28 February. Under the new rules, vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps, CNG and LPG stations across Delhi throughout the year. From 1st November to 31st January, entry of non-Delhi registered vehicles below BS6 emission standards will also be prohibited, with exemptions for CNG and electric vehicles, ambulances, fire services and other essential vehicles. Civil Aviation Ministry has announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point in space PINS instrument approach procedure for helicopter operations at Undavali Heliport. PINS procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have conventional instrument landing infrastructure. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August 28. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the username feature within 3 days. A series of strong explosions hit Kyiv overnight after President Volodymyr Zelensky warned that Russia was preparing a major strike. Ukrainian officials said Russia fired missiles and drones at the capital, causing fires and damage to residential buildings. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. IMD has said southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 days. Meanwhile, people in Delhi woke up to refreshing showers this morning. Rain lashed several parts of the city, bringing the much-needed relief from the sweltering heat. In the ICC Women's T20 World Cup, England will face South Africa in the second semi-final at the Kennington Oval in London today. The match will begin at 11 p.m. IST. Winner of this match will face Australia in the final at the iconic Lord's Cricket Ground in London on the 5th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की प्रधानमंत्री सुनाया ताकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाया ताकाची के साथ वार्ता करेंगे ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी इनमें सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिज फार्मास्यूटिकल्स स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी भारत जापान वार्षिक शिखर

0: सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची इस समय राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। श्री मिश्री ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के एक मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सुदर्शनी सेल 4-250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे पहले आईएनएस सुदर्शनी ने ब्लाटीमोर बंदरगाह पर प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच कल संपन्न हो गया। इस मंच का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने किया। मंच का उद्देश्य भारतीय पेशेवरों और कामगारों के लिए सुरक्षित और वैध विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाना और इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना था। डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और कानूनी आवाजाही को बढ़ावा देना और शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने ई माइग्रेंट 2.0 पोर्टल की भी सराहना की जो सुरक्षित और व्यवस्थित विदेश रोजगार में मदद कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता कतर की राजधानी दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। कतर सरकार के अनुसार दोनों पक्षों ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 9 जुलाई को अंतिम संस्कार के बाद चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा वार्ता ठीक तरह से आगे बढ़ रही है और तकनीकी वार्ता भी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगले चरण की वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री ने बताया कि वार्ता में 14 सूत्री सहमति पत्र पर अमल का मुद्दा मुख्य रहा। ईरान और कतर ने ईरान की 6 अरब डॉलर की परिसंपत्ति को मुक्त करने पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी तनाव पर भी विमर्श हुआ। ईरान ने कहा कि जहाजों को वही मार्ग अपनाना चाहिए जिसे ईरान ने मंजूर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है और सारी वार्ताएं कतर और पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से हो रही हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने मिसाइलें और ड्रोन दागे जिससे रिहायशी इमारतों में आग लग गई और काफी नुकसान पहुंचा। पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और कई लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने लगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया जिसके बाद उनका कोई पता नहीं है। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए संबंधित लोगों की सुरक्षित और तत्काल रिहाई की मांग की है। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हैं जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई और लगातार 17 मैचों में अजय रहने का सिलसिला जारी रखा। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है जहां अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। गीतों भरे इस सफर में स्वागत है आपका।

सनम तेरी कसम, ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इस गीत को रचा था, धुन राहुल देव बर्मन का था। अब आइए सुनवाते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का गाया यारा दिलदारा फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं जतन ललित।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
6: हेलो डॉक्टर,
7: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
6: हेलो डॉक्टर,
7: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
6: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, प्यार तो होना ही था फिल्म से। आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ें हैं, समीर अनजान का रचा गाना है और इस गाने को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित।

0: फिल्म कदर टू के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइचे के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं और लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: Hollywood.
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार।

खेल पत्रकार खेल के मैदान की घटनाओं और दर्शकों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। वे आम जनता को खिलाड़ियों के प्रदर्शन, खेल की रणनीतियों और पर्दे के पीछे की कहानियों से रूबरू कराते हैं। खेल पत्रकार सटीक आंकड़ों, विश्लेषणात्मक लेखों और लाइव कवरेज के माध्यम से खेल प्रेमियों को जागरूक करते हैं और उनका मनोरंजन भी करते हैं। पत्रकार केवल मैचों का वर्णन नहीं करते, बल्कि खेल से जुड़े विवादों, खिलाड़ियों के जीवन और नीतियों पर अपनी राय रखकर जनता की सोच को प्रभावित भी करते हैं और उन्हें आकार भी देते हैं। खेल पत्रकार जीत की खुशी, हार के दुख को शब्दों और दृश्यों में पिरोकर आम जनता तक पहुंचाते हैं, जिससे प्रशंसक खुद को खेल का एक सक्रिय हिस्सा महसूस करते हैं। खेल पत्रकारिता न केवल खेलों की रिपोर्टिंग तक सीमित है, बल्कि ये खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों को समाज तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन 2 जुलाई को खेल मीडिया पेशेवरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्तर पर उन खेल पत्रकारों के समर्पण और प्रभाव को मान्यता देता है जो दर्शकों को स्थानीय टूर्नामेंटों से लेकर ओलंपिक जैसे वैश्विक क्षेत्रों तक की घटनाओं से जोड़ते हैं। निष्पक्ष खेल भावना का नेतृत्व निष्ठा और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग करना ही खेल पत्रकारिता दिवस का उद्देश्य होता है। वर्ष 1994 में शुरू किया गया ये दिवस 2 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस एसोसिएशन AIPS की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। AIPS की स्थापना विश्व स्तर पर खेल पत्रकारों को एकजुट करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और खेल पत्रकारिता में नैतिकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। AIPS का मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये 160 से अधिक देशों के पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI द्वारा किया जाता है, जो AIPS का सदस्य है। इस दिन अलग अलग संस्थानों द्वारा सेमिनार्स, चर्चाएं और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें ये याद दिलाता है कि खेलों के मंच के पीछे भी एक मजबूत आवाज होती है और वो है पत्रकार की।

एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ गीत था, संगीत बद किया था अमाल मलिक ने।

श्रोताओं नमस्कार। जमशेदपुर कार्यक्रम में हम अक्सर बातें करते हैं दिन विशेष पर मनाए जाने वाले खास दिवसों के बारे में, जो आज भी करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हर वर्ष 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस भी मनाया जाता है।

विश्व यूएफओ दिवस का उद्देश्य अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओस और अंतरिक्ष जीवन की संभावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन विशेष रूप से 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्थित रोसवेल में हुई कथित यूएफओ दुर्घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसे यूएफओ इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। यूएफओ डे उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासु लोगों को प्रोत्साहित करता है जो ब्रह्मांड में अन्य जीव के अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। इस दिन डॉक्यूमेंट्रीज, संगोष्ठियां, चर्चाएं और रात्रि में आकाश देखने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं वर्ष 2003 में आई कोई मिल गया फिल्म का ये गाना। दरअसल इस फिल्म की पूरी कहानी यूएफओ से धरती पर आए कुछ एलियंस और उन्हीं में से बिछड़ गए एक एलियन जादू की कहानी पर केंद्रित थी। तो सुनिए कोई मिल गया फिल्म का ये गाना।

कोई मिल गया। जी हाँ, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ गाना था, गीत लिखा था इब्राहिम

और श्रोताओं, अब बातें करेंगे कार्यक्रम में दिन विशेष की, यानी 2 जुलाई के इतिहास की। तो आपको बता दें, आज ही के दिन वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो के 4थे और 5वें चंद्रमाओं कैरबेरोस और स्ट्राइक्स का नामकरण किया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1916 को, और 1972 में 2 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुआ था। दोनों देश अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने पर सहमत हुए, जिसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं थी। 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम रेखा को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता दी गई। ये भी तय हुआ कि कोई भी पक्ष इसे एक तरफा नहीं बदलेगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता जताई।

श्रोताओं, शिमला समझौते के बाद भारत ने युद्ध के दौरान पकड़े गए पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों और नागरिकों को मानवीय आधार पर रिहा करने पर सहमति दी थी। व्यापार, डाक तार संचार और लोगों के बीच आपसी संपर्क को धीरे धीरे बहाल करने के कदम भी उठाए गए थे। बहरहाल, अभी हमने आपको जो गाना सुनवाया थोड़ी देर पहले, वो हमने लिया था हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। नीति मोहन, के विशाल ददलानी और शंकर महादेवन की मिली जुली आवाज़ों में था ये गाना। विशाल शेखर का संगीत निर्देशन था और शब्द रचना थी इरशाद कामिल की।

साथियों, दिलीप नारायण सरदेसाई भारतीय टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक थे। उनका जन्म 8 अगस्त 1940 को गोवा में हुआ था। वे 1960 के दशक में भारतीय मध्यक्रम के मजबूत स्तंभ रहे। 1971 की वेस्टइंडीज श्रृंखला में उनके शानदार प्रदर्शन ने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें गोवा का हीरा कहा जाता है। आज ही के दिन 2 जुलाई 2007 को आपका निधन हुआ था।

असम गुवाहाटी के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, स्वतंत्र पत्रकार और सामाजिक टिप्पणीकार हैं अरूप कुमार दत्ता। आपका आज जन्म दिवस है। अंग्रेजी भाषा में पूर्वोत्तर भारत के साहित्य के अग्रणी लेखक माने जाने वाले दत्ता ने वयस्कों और युवाओं के लिए कई उपन्यास और गैर काल्पनिक पुस्तकें और व्यंग्य रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने मुख्य रूप से युवाओं के लिए 17 साहसिक उपन्यास और वयस्कों के लिए लगभग 18 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कई किताबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जैसे द काजीरंगा ट्रेल। उनकी दो पुस्तकों को जापानी प्रकाशन और प्रकाशन श्रृंखला में सत्यजीत रे और रस्किन बॉन्ड की रचनाओं के साथ शामिल किया गया था। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2023 में असम सरकार द्वारा उन्हें माधव देव पुरस्कार से नवाजा गया। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय 2018 में और 2020 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि दी गई। 1989 में उन्हें बाल साहित्य के लिए शंकर पुरस्कार मिल चुका है। उनकी दूसरी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 2004 से 2008 के बीच उन्होंने भारत सरकार के सांस्कृतिक केंद्र जवाहरलाल नेहरू इंडियन कल्चरल सेंटर के निदेशक के रूप में जकार्ता और इंडोनेशिया के बाली में भारतीय दूतावास में भी काम किया।

भारतीय टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक दिलीप नारायण सरदेसाई की पुण्यतिथि पर और भारतीय लेखक, स्वतंत्र पत्रकार और सामाजिक टिप्पणीकार अरूप कुमार दत्ता को उनके जन्म दिवस पर आज हम याद कर रहे हैं।

उदित नारायण, मास्टर विघ्नेश, बेबी पूजा और साथियों की आवाज़ों में स्वदेश फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। एआर रहमान के संगीत निर्देशन में गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। और श्रोताओं नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ होगा गीत संगीत, थोड़ी बातचीत करेंगे और साझा करेंगे जानकारियाँ भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

0: कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और आज कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रेति। साथियों, अलोक धनवा समकालीन हिंदी कविता के प्रखर और जनपक्षधर कवि माने जाते हैं। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था उनका जन्म। वे उन कवियों में शामिल हैं जिन्होंने कविता को जनता की आवाज और संघर्ष का माध्यम बनाया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोलीदा को पोस्टर और जनता का आदमी आज भी साहित्यिक और सामाजिक चेतना की मिसाल मानी जाती है। सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी एक वरिष्ठ भारतीय सिविल सेवक थे जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने। उनका भी जन्म 2 जुलाई आज ही के दिन 1893 को हुआ था। वे पंजाब और आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे। उन्होंने प्रशासन में उत्कृष्टता और निष्पक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया। त्रिवेदी जी को 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका योगदान भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतिहास में अमूल्य है और अलोक धनवा की कविताओं में शोषित वर्ग, स्त्री विमर्श और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक तीखी संवेदनशीलता देखने को मिलती है। वे सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी रहे हैं जिन्होंने अनेक आंदोलनों में सक्रिय भाग

दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाजों में रंगते बसंती फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने और गीत लिखा था प्रसून जोशी ने। वर्सटाइल अभिनेता है। 2 जुलाई 1958 को दिल्ली में जन्मे पवन ने अपने शानदार अभिनय के दम पर समानांतर सिनेमा और मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्मों और साथ ही पंजाबी सिनेमा में भी एक गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद रुचिका थिएटर ग्रुप से जुड़कर अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्हें देश भर में घर घर में पहचान 1986 के दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक नुक्कड़ से मिली। पवन मल्होत्रा को मुख्य रूप से यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में महारत हासिल है। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में शामिल है 1989 की सलीम लांगड़े पे मत रो। सईद अख्तर मिर्जा की इस फिल्म में उन्होंने सलीम का मुख्य किरदार निभाया था, जो उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1989 की ही पाग बहादुर बुद्धदेव दास गुप्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने

घुनुराम बाग नर्तक की भूमिका निभाई थी। 2004 को आई थी फिल्म ब्लैक फ्राइडे। इस बहुचर्चित फिल्म में उन्होंने खूंखार टाइगर मेमन की भूमिका को बेहद प्रामाणिकता के साथ निभाया था। 2013 में भाग मिल्खा भाग फिल्म में मिल्खा सिंह के कोच गुरुदेव सिंह का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया था। उनकी कुछ दूसरी हिट फिल्मों की अगर बात करें तो 2007 की जब वी मेट, 2009 में आई थी दिल्ली सिक्स, बदमाश कंपनी, 2016 की रुस्तम और ओ माय गॉड टू ये फिल्म आई थी 2023, जिनमें उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया है। अपनी बेजोड़ कला के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें फकीर और पंजाबी फिल्म फौजा के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। पवन मल्होत्रा को उनके जन्मदिवस पर हम उनके आगे आने वाले स्वस्थ और सफलतम जीवन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और अब आइए सुनते हैं उन्हीं की अभिनीत फिल्म जब वी मेट का ये गाना।

जब वी मेट। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। सोनू निगम और जावेद अली की आवाज़ों में प्रीतम का संगीत निर्देशन था, गीत लिखा था इरशाद कामिल ने।

और श्रोताओं, आज मोहम्मद अजीज़ का भी जन्मदिन है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज पार्श्व गायक थे मोहम्मद अजीज़। उन्हें मुख्य रूप से 80 और 90 के दशक में अपनी बहुमुखी और मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ के लिए जाना जाता था। उन्होंने हिंदी, बंगाली और उड़िया भाषाओं में हजारों सदाबहार गीत गाए हैं। आइए आज उनके जन्मदिवस पर सुनते हैं उनकी ही आवाज़ में नगीना फिल्म का ये गाना।

मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में नगीना फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। और इसी गाने के साथ आज का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अब बस यहीं संपन्न हुआ। तो दीजिए अपनी रेडियो सखी श्रीति को इजाज़त। नमस्कार।

0: could.
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। इस समय आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमें सुन रहे हैं। हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। अभी इसी क्रम में लेकर हाजिर है कार्यक्रम भावगीत आपके लिए। भावगीत कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपके रेडियो सखी श्रीति। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा नमस्कार।

तू एक आईने की तरह है जिसमें मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी नज़र आती है, जहाँ जो कुछ भी बिखरा हुआ है तो हर रोज़ आकर थोड़ा थोड़ा संवार जाता है। तेरी खामोशी में मेरे लफ्ज़ बोलते हैं, तेरे होने से ही मेरे एहसासों की दुनिया आबाद है। तू दरिया सा मुझ में बहता रहता है और मैं किनारे पड़ी रेत की तरह खामोशी से हर बार तुझ में समा जाती हूँ।

दरमियाँ हमारे ये जो कुछ फासला है, मानो जोड़ कर रखता है तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे। हर रोज कुछ कदम चल कर आती हैं ये आंखें, और बस दो चार कदम पर ही हवा में लहरा कर जाने क्या सोच कर ठहर जाते हैं ये हाथ। मगर मेरा तुम तक और तुम्हारा मुझ तक पहुँचने का हर रोज़ का ये सफ़र अब अच्छा लगने लगा है, ऐसे जैसे मानो जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो।

काश के मेरे दिल की आहों की सदाएं तेरे दिल तक पहुंच जाए, काश के दर्द के इस गहरे गर्त से तू मुझे निकाल ले जाए। इंतज़ार की लड़ी टूटने से पहले मेरी दुआ कबूल हो, मेरे सपनों की दुनिया फिर से आबाद हो, गम भी मुस्कुराने लगे अगर तू आ जाए।

अब तू जो आ मिला है तो झिलमिलाने लगे हैं मेरे दिन रात, सुनहरे ख्वाबों से लगती है अब जिंदगी, मेरी आंखों के इंतज़ार को करार मिल गया, तू जो रूबरू आ गया, मेरे हाथों में तेरा हाथ है, जिंदगी में तेरा साथ है, एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिशों का सफ़र अब यही ख़त्म हुआ।

और इसी गाने के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं कबीर सिंह, नाम शबाना, आशिकी, शापित और जलेबी। इन सभी गानों के लिए एक ही आवाज़ थी श्रेया घोषाल की। संगीतकार थे अमाल मलिक, रोचक कोहली, अंकित तिवारी, चिरंतन भट्ट और जावेद मोहसिन। गीतकार थे इरशाद कामिल, मनोज मुंतशिर, संदीप नाथ, समीर, प्रशांत इंगोले और कुणाल वर्मा। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन राग गौड़ सारंग और मुल्तानी में।

0: राग गौड़ सारंग और मुल्तानी में पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और राज्य केंद्रों से समाचारों का प्रसारण होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: Read by Valsa Williams.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एसआईआर के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मुरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और एनटीपीसी और सीएमपीडीआई के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ एमओयू। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची स्थित लोक भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर उसे संबंधित बीएलओ को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री तथा अन्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से बीएलओ द्वारा दिए जाने वाले गणना प्रपत्र को समय पर भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को सफल तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़कों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव मनोज कुमार से मुलाकात की और विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मतीकरण और निर्माण पर बातचीत की।
1: तो ये हालात राज्य की ठीक नहीं है। कब जानते भाई कहाँ पैसा जा रहा है, लेकिन जनता को भाई नागरिक सुविधा चाहिए ना, पानी बिजली सड़क। बिजली की क्या स्थिति है राज्य की, किसी छुपी है क्या? सिल्ली यहाँ से 40 किलोमीटर है ना, 15-16 घंटे बिजली नहीं रहती है। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सांसद मैं मंत्री हूँ, सांसद को पैरवी करनी पड़ती है, तब 1 हफ्ता 10 दिन के बाद ट्रांसफार्मर लगता है। तो चीजें बहुत डिरेल हुई है और स्थिति राज्य की डामाडोल है।
0: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पुलिस के सामने हत्या कर देना गंभीर मामला है। श्री मरांडी ने इस

0: घटना के दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग की।
1: में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना पुलिस के सामने की हत्या और इसके बाद जो कार्रवाई हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी। तो मैं समझता हूँ कि SP को हटाना कोई एक सजा नहीं, कायदे से होना तो ये चाहिए था पुलिस के ऊपर FIR होनी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार।
0: इधर आरोपों पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
2: दो दो पुलिस कप्तान हटाए गए, थानेदार सस्पेंड हुआ, पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए, प्रशासनिक कार्रवाई और SIT का गठन हुआ, मुख्य आरोपी पर पकड़ने के लिए इनाम घोषित की गई। इससे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और क्या हो सकती है? उसमें आप बंद बुलाइए, मशाल जुलूस निकालिए, ये जनता को गुमराह करने के लिए।
0: राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मूरी रेलखंड के 59 किलोमीटर विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल पहुंचकर ब्रेन मलेरिया से पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, घाटशिला और मुसाबनी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर गंभीर चिंता जताई। श्री मुंडा ने जिला प्रशासन से तत्काल युद्ध स्तर पर रोकथाम, उपचार और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की।
3: फैंसीफेरम ब्रेन मलेरिया के नाम से तो लगभग इस समय 35 इस तरह के पेशेंट यहाँ एडमिट है, उसमें से अधिकतर बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अस्पताल नहीं पहुँचे, इसलिए वो सारे बच्चों की मृत्यु हुई। मैं ये आग्रह करूँगा खास करके ग्राम प्रधानों से और मुखिया से, ऐसे प्रभावित लोग उनको विलम्ब किए बगैर तुरंत अस्पताल के लिए भेजे।
0: घरेलू शेयर बाजार आज 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 244 अंक की उछाल के साथ 77,166 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,086 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
4: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड सीएमपीडीआई ने कोयला एवं खनिज परियोजना के विकास और संचालन के लिए 3 वर्षीय तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अन्वेषण, खान संचालन, परियोजना प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा क्षमता निर्माण सहित खनन मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटों में तेज हवा चलने, बादल गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एसआईआर के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मोरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और एनटीपीसी और सीएमपीडीआई के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ एमओयू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन का 1:20 हुआ है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे आपको थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
4: दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
6: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
6: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर, और कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, शुरुआत कर रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की। बी प्राक, विशाल दादलानी, शेखर रवजियानी की आवाज़ों में इस गाने से, फाइटर फिल्म का गाना है ये, और विशाल शेखर का संगीत निर्देशन है, कुमार का लिखा हुआ गीत। आइए सुनते हैं।

मीमी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इसे एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया था, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और आवाज़ थी श्रेया घोषाल की। आइए अब आपको सुनवाते हैं तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। प्रीतम का संगीतबद्ध किया हुआ है और इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में भूल भुलैया टू फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था इसे प्रीतम ने और शब्द रचना थी अमिताभ भट्टाचार्य की। आइए अब आपको फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना सुनवाते हैं मैदान फिल्म से।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी रोमी और तनिष्क बागची की। गीत लिखा था नीरज रजावत ने, संगीतवत किया था तनिष्क बागची ने। और इस गाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया था मैदान फिल्म का गाना, जावेद अली और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में। संगीत AR रहमान का था, गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लाल सिंह चड्ढा।

लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें थी। संगीत पद किया था प्रीतम ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लापता लेडीज फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीतकार है राम संपत और गीत लिखा है प्रशांत पांडे ने।

और ये थी हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: has stood the test of time. India's proposal for a comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा

0: द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
4: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
5: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं गीत संगीत का सिलसिला। जी हाँ, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम, और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में आशिकी फिल्म का गाना। समीर का लिखा हुआ गीत है, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल का क्या कसूर फिल्म का टाइटल ट्रैक। कुमार सानू की आवाज़ में है ये गाना। समीर का लिखा हुआ गीत है, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

चमत्कार फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था, संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। मिस्टर आशिक फिल्म से लिया है ये गाना हमने, कुमार सानू की आवाज़ है एक बार फिर से, जतिन ललित का संगीत निर्देशन है और शब्द रचना है इंदीवर की।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है आज। इस बैठक में राज्य की नई औद्योगिक और टेक्सटाइल नीति पर बड़ा फैसला होने की संभावना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज शाम जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकालेगी। भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था के खिलाफ कल जमशेदपुर बंद का भी आह्वान किया है। इस बीच पुलिस ने मुख्य फरार आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 5 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका मुख्य फोकस विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर रहेगा। किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे, इसके लिए कांग्रेस ने राज्य भर में 23,000 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार लेते ही उन्होंने आदित्यपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। नए एसपी ने कहा कि जिले में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
1: प्रीवियस एसपी है, उन लोगों ने अच्छा काम करके और पुराना क्रिमिनल से पहले हम लोग को वेरीफाई किया जाएगा। एंटी क्राइम चेकिंग में दिन में 2 बार हम लोग लगाने का शुरू करेंगे और उसमें अगर कोई क्रिमिनल इसमें घूम रहा है तो उसको भी हम लोग नजर करेंगे।
0: गौरतलब है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वर्तमान एसपी निधि द्विवेदी के स्थान पर मनोज स्वर्गियारी को जिले की कमान सौंपी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ में साल 2013 में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और 5 जवानों की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत को नमन किया। इस मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। राज्य सरकार के आदेश पर जिले के सभी 6 प्रखंडों में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जामताड़ा प्रखंड कार्यालय में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र आवेदकों को मौके पर ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
2: उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में यह प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आवश्यक दस्तावेज है, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार नंबर, इन सभी दस्तावेजों को लेकर प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करेंगे। आवेदन जाने के उपरांत ऑनलाइन फी पेमेंट करके स्लॉट बुक करेंगे, यहाँ इस कैंप में टेस्ट के लिए आएंगे। अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उनको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
0: हजारीबाग नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कुल 6,09,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अवधि में 649 नए हाउस होल्ड का पंजीकरण भी किया गया है। राजस्व संग्रह में वार्ड संख्या 12 पहले और वार्ड संख्या

5 दूसरे स्थान पर रहा। निगम प्रशासन ने समय पर टैक्स भुगतान करने वाले नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
3: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
3: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
3: इसे तराशा जाता है
2: और
3: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
3: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
3: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
3: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
3: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
3: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
3: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
3: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
2: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
3: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
3: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
4: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
5: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
4: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
6: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है

0: प्यारा है, सबको पसंद आता है।
1: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
2: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
1: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
0: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे?

0: गया है।
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा।
4: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज जय हो,
8: महाराज जय हो,
7: महाराज जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
10: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं चल

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
11: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
6: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश, समझ गए ना?
9: जी सर।
7: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
8: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
6: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
8: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
9: जी सर।
8: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
7: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
8: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
6: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
8: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
9: जी सर।
8: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
6: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
8: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
7: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
8: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
6: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
8: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
7: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
8: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
1: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
12: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने कुछ गीत। कलाकार हैं आशा भोसले और सुजात खान।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर।
1: सुनना ना भूलिए आज शाम 5:02 पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ये वाणी, जहां होगी बात उन मुद्दों की जो सीधे आपसे, आपकी सोच और आपकी जिंदगी से जुड़े हैं।
0: खेलों की दुनिया से लेकर के युवाओं की जिम्मेदारी तक, साहित्य से लेकर के वर्तमान घटनाओं तक, कुछ खास विषयों पर होगी एक खास चर्चा।
1: तो तैयार रहिए साहिल कुमार शर्मा
0: और अविनाश छेत्री के साथ
1: युवाणी में आज शाम 5:02 पर, सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 MHz पर।

0: आशा भोसले और सुजात खान की आवाज़ों में कुछ गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम है लोकगीतों का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर।
2: सुनना ना भूलिए आज शाम 5:02 पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ये वाणी, जहां होगी बात उन मुद्दों की जो सीधे आपसे, आपकी सोच और आपकी जिंदगी से जुड़े हैं।
1: खेलों की दुनिया से लेकर के युवाओं की जिम्मेदारी तक, साहित्य से लेकर के वर्तमान घटनाओं तक कुछ खास विषयों पर होगी एक खास चर्चा।
2: तो तैयार रहिए साहिल कुमार शर्मा
1: और अविनाश छेत्री के साथ
2: युवाणी में आज शाम 5:02 पर, सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 MHz पर।

कार्यक्रम लोकगीत में आइए आज सुनते हैं कुछ अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं विजया भारती झा। लीजिए सुनिए उनकी पहली प्रस्तुति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत में अंगिका लोकगीत विजया भारती झा से। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।

लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और शाम 4:02 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर।

मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत स्वयं एन्यूमरेशन प्रपत्र भरा। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी अपना प्रपत्र जमा किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर इस प्रक्रिया को पूरा करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। जमशेदपुर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, हिमांशु सिंह हत्याकांड और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ भाजपा समेत एनडीए दलों ने कल जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है। बंद की पूर्व संध्या पर आज पूरे शहर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। भाजपा प्रवक्ता अभय सिंह और विधायक पूर्णिमा साहू ने जनता से बंद का समर्थन करने की अपील की है। सारंडा जंगल में नक्सलियों की धमक खत्म होने के बाद झारखंड पुलिस ने वहां तैनात जवानों के रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि मॉनसून के दौरान जवानों को बरसाती बीमारियों और ब्रेन मलेरिया से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। पलामू में आज से प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप की शुरुआत की गई है। पहले दिन लेस्लीगंज पंचायत सचिवालय में आयोजित कैंप का उद्घाटन उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया। उपायुक्त ने मौके पर 10 लाभुकों के बीच ऑन स्पॉट लर्निंग लाइसेंस का वितरण किया। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुमला में जिला स्तरीय सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय के जुबली स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 4:02 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर।

0: 106.1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफर तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें, तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक, बहुत
0: बता जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया।

0: दिल्ली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
1: जी
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी।
0: इसमें जी जी जी
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं, अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
1: अच्छा।
0: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
1: बाहर
0: से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उससे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत, उनका अहम योगदान था इसमें
1: जी
0: जी जी जी।
1: तो
0: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर, बहुत जबरदस्त
1: जी
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से जी जी जी।
1: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से
1: खात्मा करें,
0: खात्मा करें
1: जी। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि

0: एक तो ये कि मिशन तो है, लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
0: जी,
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
0: क्या बात,
1: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी।
0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, उसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है
0: जी।
1: जी,
0: और दो बार आपको मिला है?
1: दो बार गैलेंट्री।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली। लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ।
0: जी।
1: उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम।
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था।
0: ओके।
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें। जी
0: जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था, ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और
0: जी,
1: हाँ सब
0: एसएसबी की जी। टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी। तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में के देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स।
0: अच्छा।
1: में ज्वाइन किया। जी
0: जी। तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सोलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा।
1: भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी, एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय असम जल रही थी एनडीएबी का उससे,
0: अच्छा,
1: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफी काम किए थे। हमारे बटालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें, उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
0: अच्छा, हाँ, तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया जीडी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी,
1: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
0: जी,
1: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की,
1: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग,
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन, हाँ, असम में आपने शुरुआत,
1: अच्छा, थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत, अच्छा, हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में हुआ। जी जी,
0: अच्छा,
1: जी, जी, जी।
0: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ, जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था,
0: अच्छा,
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन

0: बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी, वो रोटेट होके आ गई
1: अच्छा
0: असम में, आ गई हॉली में। जी
1: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं।
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्सुंग में मेरी पोस्टिंग
1: जी।
0: हुई है।
1: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग सही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है।
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है
1: जी
0: उसमें मेरा
1: जी
0: कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश
1: जी
0: रहता है।
1: जैसे
0: जी
1: आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक
0: पचास
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का। उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ,
1: तो ये जो आपका
0: लेकिन
1: पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज़ को हम याद करते
1: अच्छा,
0: हैं। जी
1: तो
0: हाँ
1: ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
0: जी
1: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं?
0: जी क्योंकि इसे बहुत मेहनत करना पड़ा। टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में।
1: जी।
0: जी।
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी, मेन तो आप सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो
1: जी
0: सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन
1: जी
0: ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें
0: हाँ, जो
1: इंफॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम,
1: जी मिल जाए।
0: टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है,
1: जी जी
0: उस पर उतना विश्वास नहीं। लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है और ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी,
0: तो आप
1: तो ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
1: जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलेविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माय ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोध है फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम। आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश
1: जी
0: की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी
1: जी
0: देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये, जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद। हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।

0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर, आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही अपने रिलेटेड चीजें,
1: फोर्स से ही मैंने
0: जी। आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये
0: जी। अच्छा। इसमें
1: कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं।
0: अच्छा।
1: खाना, और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है।
0: ओके।
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर प्राधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज, और
0: अच्छा।
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा।
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी,
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी।
0: जंगल तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है।
0: अच्छा।
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे,
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है।
0: 1 महीना
1: जी।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ, लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है?
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
0: अच्छा। यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा।
1: अचानक सब चीज होता है,
0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके।
1: हाँ।
0: एक तरह से ड्रिल।
1: ड्रिल। हाँ।
0: अच्छा।
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
1: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता
0: है, मोटिवेटेड रखने।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड, फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में उनको ढाला जाता है।
0: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी। हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं
0: जी।
1: ऑपरेशन काफी बड़ा होता है तो फिर

0: लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
1: जी
0: जी
1: आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी जी जी जी
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
1: अच्छा
0: पकड़ना है, जी उसके उसके
1: अच्छा
0: उसके बारे में
1: यानी
0: है।
1: कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें वो भी आपने किया हुआ है।
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जी
1: सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
1: जी
0: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा
1: तो
0: आएगा।
1: आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया, मतलब?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही
1: अच्छा
0: किए।
1: सर,
0: जी
1: यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं,
0: जी
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा। उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क

0: उसमें वन स्टार और टू स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजीडी चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये है सर सुशील कुमार नई दिल्ली से,
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी उनकी सभी उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद, झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा, आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

राज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग ओपन जेल की सुविधाओं और प्रबंधन से जुड़ी जनहित याचिका पर

0: सुनवाई की है। अदालत ने राज्य सरकार को आगामी 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विभाग की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 25 नए वाहन सौंपे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि BDO को नए वाहन मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। गुमला में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने आज सदर क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने BLO को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को खेल, विज्ञान, कला, संस्कृति और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 600 अनुबंध कर्मियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। पीड़ित चिकित्सकों, नर्सों और लैब असिस्टेंट ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रेजरी में पैसा होने के बावजूद वे फाइलों के चक्कर काट रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका दोस्त साहिल कुमार शर्मा।
1: और मैं अविनाश।
0: और एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। हर बार की तरह आज भी लेकर आए हैं कुछ ऐसे विषय जो आपकी सोच, आपके सपनों और आपके आज से जुड़े हुए हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं।
1: कभी कभी एक छोटी सी कहानी हमें बड़ी सीख दे जाती है। कभी किसी खिलाड़ी की मेहनत हमें प्रेरणा देती है और कभी कोई छोटी सी लापरवाही हमें ज़िंदगी की अहमियत समझा देती है। तो आज इस चर्चा में कुछ ऐसे ही विषयों पर हम बात करेंगे।
0: दोस्तों, जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट देखते हैं या किसी खिलाड़ी को मेडल जीतते देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी नज़र खिलाड़ी पर जाती है और जाना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो वही मैदान में करता है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस खिलाड़ी की कहानी हम तक पहुंचाता कौन है? उसके संघर्ष की कहानी, उसकी मेहनत, उसकी जीत और उसकी हार के पीछे की वजह को लोगों तक लेकर कौन आता है? यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खेल पत्रकार यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट।
0: आज खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है। आज एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किसी खिलाड़ी की पूरी जानकारी, पूरी जर्नी को सामने लेके आता है। चाहे किसी खिलाड़ी का छोटे शहर से निकलकर बड़ा नाम बनाना हो या फिर लंबे संघर्ष के बाद वापसी करना हो, ये कहानियाँ लोगों तक इंस्पायर करती है।
1: अगर हमें भारतीय खेलों की बात करें तो खिलाड़ियों की पहचान और उनकी मेहनत की कहानी लोगों तक पहुँचाने में मीडिया और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का बड़ा योगदान रहा है।
0: चाहे MS धोनी की लीडरशिप और शांत अंदाज में फैसले लेने की क्षमता हो, रोहित शर्मा की कप्तानी और टीम के साथ लेकर चलने की सोच हो, विराट कोहली की मेहनत और जुनून हो, नीरज चोपड़ा का संघर्ष और समर्पण हो, या फिर सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ी की वर्षों की मेहनत और देश के लिए खेल के प्रति समर्पण, हर कहानी युवाओं को प्रेरणा देती है और इन कहानियों को लोगों तक पहुँचाने में खेल पत्रकारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
1: इन सभी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का काम खेल पत्रकार करते हैं। खेल पत्रकारों का काम सिर्फ तारीफ करना नहीं होता, वे खेल व्यवस्था की कमियों को भी सामने लाते हैं। किसी खिलाड़ी की सुविधा

0: नहीं मिल रही, ट्रेनिंग में समस्या हो रही या किसी प्रतिभा को जरूरत है। पत्रकारिता इन मुद्दों को आवाज़ देती है।
1: हमारे जमशेदपुर और झारखंड की बात करें तो यहाँ भी खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और कई दूसरे खेलों में युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में खेल पत्रकार इन प्रतिभाओं को पहचान देने का माध्यम बनते हैं। खेल पत्रकारों की इसी योगदान के लिए आज 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है।
0: क्योंकि एक खिलाड़ी मैदान में इतिहास बनाता है, लेकिन एक पत्रकार उसी इतिहास को लोगों तक पहुंचाता है और इसी मेहनत, संघर्ष और सपनों की उड़ान को महसूस करने के लिए सुनते हैं एक प्रेरणादायक गीत।

0: தங்கள்
1: आपने सुना फिल्म दंगल का ये जोश से भरा गीत, जिसके बोल हैं रे लठ गाड़ दूं। गायक है दिलेर मेहंदी, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीतकार है प्रीतम।
2: दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए मेहनत जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जिम्मेदारी, और इसी जिम्मेदारी से जुड़ा है हमारा अगला विषय। श्रोताओं, सड़क हमारे जीवन का हिस्सा है। हर दिन हम सड़क पर निकलते हैं, लेकिन कई बार छोटी सी लापरवाही बड़े परेशानी का कारण बन सकती है। आज के युवा तेज, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक तो है, लेकिन इस एनर्जी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। ट्रैफिक रूल्स का पालन करना केवल एक नियम नहीं है, ये हमारी और दूसरों को जिंदगी के प्रति सम्मान है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट का ध्यान रखना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन से दूरी रखना, ये छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है।
1: कई बार हम सोचते हैं बस थोड़ी दूरी ही है, हेलमेट की जरूरत नहीं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें समझना होगा कि कुछ मिनट बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित घर पहुँचना। युवा साथियों, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परिवार की उम्मीदें, आपके दोस्तों की यादें और आपके सपने भी आपसे जुड़े हैं। इसलिए सड़क पर स्मार्ट वही है जो सेफ रहे। जमशेदपुर जैसे शहरों में, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलते हैं, वहां रोड सेफ्टी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आइए हम खुद से एक छोटा सा वादा करें, हम नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: आज हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो हमारे माध्यम से आप श्रोताओं से जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं सड़क सुरक्षा पे इनकी क्या राय है।
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं जमशेदपुर में रहने वाला एक आम नागरिक हूँ। आज का मुद्दा यह है कि सड़क हादसे को कैसे रोका जा सके और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप सभी को यह पता होगा कि सड़क हादसे होने का सबसे प्रमुख कारण होता है सड़क नियमों का पालन न करना। वह नियम हमारे ही भले के लिए बनाया गया है और हमें उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। उसे फॉलो न करने की वजह से ही हमें डेली बेसिस पे रोड एक्सीडेंट देखने को मिलता है। आपने कई वीडियोस और लाइव देखा होगा कि कैसे आजकल के युवा लड़के जो हैं, वो ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं, हेलमेट यूज नहीं करते हैं और बाइक काफी रफ्तार में चलाते हैं और आजकल तो स्टंट भी वो लोग काफी रोड में दिखाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं जो कि इस रोड एक्सीडेंट को बढ़ावा देती हैं और ज्यादातर केस इसी वजह से होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन युवा लड़कों को ये समझाना चाहिए कि ये जो स्टंट और वो जो डेरिंग दिखा रहे होते हैं सड़क दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं इससे वो, और अगर वो इन चीजों पे लगाम लगा सके, इस पे कंट्रोल कर सके, तो काफी हद तक सड़क हादसे पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें युवा लड़कों को यह बताना होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि उनका लाइफ कितना इम्पोर्टेंट होता है उनके फैमिली के लिए, क्योंकि इनकी हर लड़के या लड़की के माँ बाप जब भी रोड में बाइक लेके जाते हैं वह उनकी राह देखते हैं कि वो अब आएगा। हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं कुछ सड़क दुर्घटना में कुछ हो ना जा। तो मेरे यही दरख्वास्त है, मैं यही चाहूंगा कि कोई स्कीम ऐसा हो जिससे हम अपने युवा को यह समझा सकें कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और सड़क हादसों को कम कर सकें।
4: मैं पूजा हूँ और मेरे अनुसार स्कूल और कॉलेज में रोड सेफ्टी की जानकारी तो दी जाती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी दी जानी चाहिए। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रैफिक रूल्स की पूरी जानकारी नहीं है। कई लोग हेलमेट तक नहीं पहनते, सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते और सड़क पार करते समय भी लापरवाही करते हैं। मेरे अनुसार अगर स्कूल और कॉलेज में समय समय पर रोड सेफ्टी पर अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सेमिनार्स कराई जाए तो स्टूडेंट्स को ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह समझ पाएंगी। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना आएगी और वे अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। मेरा मानना है कि रोड सेफ्टी की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर सीखना चाहिए। अगर हम सभी ट्रैफिक

0: रूल्स का पालन करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे तो सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मेरे अनुसार सड़क सुरक्षा की शिक्षा हर छात्रों के लिए उतना ही जरूरी है जितना अन्य विषयों की पढ़ाई। सही जानकारी और सही आदतें ही हमें सुरक्षित रख सकती है। धन्यवाद।
1: अक्सर कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि क्या युवा सही में सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं? हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्या दोस्तों का दबाव यानी पीयर प्रेशर आपको वाहन तेज चलाने के लिए उकसाता है? आखिर में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण क्या है? लापरवाही, जल्दबाजी या जानकारी की कमी? इन पे आपका क्या कहना है?
2: नमस्कार, मेरा नाम संजना है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे अनुसार कुछ युवा सड़क नियमों का गंभीरता से लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही करते हैं। जागरूकता बढ़ रही है, फिर भी हर युवा को यही समझना चाहिए कि ट्रैफिक नियम केवल कानून नहीं, बल्कि हमारा और दूसरे की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। मेरे अनुसार कई युवा हेलमेट या सीट बेल्ट को असुविधा या अनकंफर्टेबल समझते हैं, या यह सोचते हैं कि वे छोटी दूरी है, इसमें क्या जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही भी कभी दुर्घटना के कारण बन सकती है, इसीलिए सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, कड़े चालान सड़क नियमों का पालन करवाने में मदद करता है, क्योंकि वे लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम लोग चालान से डर कर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नियमों का पालन करेंगे।
3: नमस्कार, मेरा नाम संगम है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, कई बार दोस्तों का दबाव युवाओं को तेज गाड़ी चलाने या स्टंट करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम किसी के दबाव में आकर अपनी या दूसरों की जान जोखिम में ना डालें। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही जैसे हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इससे ना केवल हमारी बल्कि हमारे परिवार और दूसरे लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हाँ, सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो देखकर कुछ युवा प्रभावित हो जाते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे स्टंट मनोरंजन नहीं बल्कि जान के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे वीडियो से प्रेरित होने के बजाय सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार अपनाना चाहिए। मेरे अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण लापरवाही और तेज रफ्तार है। कई लोग जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा धैर्य और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाना चाहिए।
4: दोस्तों, कभी-कभी कुछ किताबें केवल किताबें नहीं होती, वे अपने समय को समाज की तस्वीर होती है। वो हमें बताती है कि उस दौर के लोग क्या सोचते थे, उनकी परेशानियाँ क्या थी, उनकी इच्छाएं क्या थी और समाज किन बदलावों से गुजर रहा था। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन।
1: जब हम गबन नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है, आखिर यह कहानी किस बारे में है? लेकिन दोस्तों, गबन सिर्फ पैसों की हेरा फेरी की कहानी नहीं है, यह इंसानी भावनाओं, सामाजिक दबाव, दिखावे की सोच और उस समय के समाज की मानसिकता को समझने वाली कहानी है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र रमानाथ के माध्यम में प्रेमचंद जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कई बार इंसान समाज में अपनी प्रतिष्ठा और दिखावे को बनाए रखने के लिए ऐसे सवाल और ऐसे फैसले कर लेता है जो आगे चलकर उसके जीवन में कठिनाई पैदा कर देते हैं।
4: उस समय का समाज भी कुछ ऐसे ही सोच से गुजर रहा था, जहां बाहरी दिखावा, सामाजिक सम्मान और दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन प्रेमचंद जी का उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति की गलती दिखाना नहीं था, उन्होंने यह दिखाया कि जब इच्छाएं

0: ज़रूरतों से बड़ी हो जाती है और दिखावा सच्चाई पर हावी हो जाता है तो इंसान गलत रास्ते पर जा सकता है। यही गबन की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अगर हम आज के समय से इसे जोड़कर देखें तो पाएंगे कि कहानी भले ही पुरानी समय की है, लेकिन इसके सवाल आज भी हमारे सामने हैं। आज भी कई बार लोग दूसरों से तुलना करने लगते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे समय में गबन हमें यह याद दिलाता है कि असली मूल्य हमारी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार में होता है। प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को आईना दिखाती है।
1: उन्होंने किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग और आम लोगों के जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी। उनकी लेखनी में समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है। गबन भी हमारे सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारे सोच को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे भी समाज की मजबूती केवल आर्थिक विकास से नहीं होती बल्कि ईमानदारी, विश्वास और नैतिक मूल्यों से भी होती है। आज के युवा वर्ग के लिए इस रचना का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सफलता पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, बड़े सपने देखना भी गलत नहीं है,
0: लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता चुनना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि सफलता थोड़े समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन विश्वास और ईमानदारी जीवन भर भी पहचान बना सकती है। और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद की रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं। क्योंकि समय बदल गया है, समाज बदल गया है, लेकिन इंसान की भावनाएं, उसकी इच्छाएं और सही गलत के बीच का संघर्ष आज भी कहीं ना कहीं वही है। तो दोस्तों,
1: गबन हमें केवल एक कहानी नहीं सुनाता, यह हमें अपने फैसलों, अपनी सोच और अपने मूल्यों को समझने का अवसर देता है। यही साहित्य की खूबसूरती है कि वह हमें केवल अतीत से नहीं जोड़ता बल्कि वर्तमान को बेहतर समझने की दृष्टि भी देता है।

अब जानते हैं कुछ खेल के खबरों की बारे में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की शानदार पारियों की बदौलत 189 रन बनाए। बेल्जियम ने फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में सेनेगल को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए बेल्जियम ने जीत दर्ज की।

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के 8 विकेट से हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की की। अब दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आमने सामने होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉकआउट मुकाबले रोमांचक दौर पर पहुंच चुके हैं। आज स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से और पुर्तगाल का टक्कर क्रोएशिया से होगी।

अब समय हो चला है करंट अफेयर्स का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 दिवसीय फ्रांस दौरे पर है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना तथा भारत में निवेश के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। देश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से ओडिशा में एक बड़े

देश में ग्रामीण रोजगार को नई दिशा देने के उद्देश्य से वीवीजी रामजी योजना देश भर में लागू हो गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

खेल पत्रकारों की, अनदेखे योगदान की, सड़क सुरक्षा और ज़िंदगी की कीमत की, गबन जैसी सामाजिक बुराई की।

0: दोस्तों, हम युवा हैं। इस देश का वर्तमान भी हम ही हैं और भविष्य भी हम ही। तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है कि हम जागरूक रहे, ईमानदार रहे और सुरक्षित रहे। मैं अविनाश
1: और मैं साहिल
0: अब इजाज़त चाहता हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर।
1: नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाइयों को मालती का नमस्कार। श्रमिक श्रोताओं, आधे घंटे के इस कल कारखाने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें हम अपनी चर्चा से। श्रोताओं, दुनिया में लोग

लोगों को कई अन्य मुद्दों पर तो विभाजित किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ है तो सबको एक जो एक सबको एकजुट करती है वह है खेल। जी हाँ, जब खेल की बारी आती है तो हम एकजुट हो जाते हैं। हर किसी का कम से कम एक पसंदीदा खेल तो होता ही है, जिसे वह हर दिल से पसंद करता है, और उस खेल से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहता है। हम जिस व्यक्ति से ये विवरण की उम्मीद करते हैं वे हैं हमारे खेल पत्रकार। ऐसे खेल पत्रकारों के महत्व को पहचानने और इन्हें सम्मानित करने के लिए ही हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आज का यह दिन युवाओं को खेल पत्रकारिता में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना सन 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की गई थी। AIPS का गठन 2 जुलाई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान किया गया था। हालांकि खेल पत्रकारिता 1800 के दशक के दौरान विकसित हुई थी और धीरे धीरे 1920 के दशक में ही इसे खेल से संबंधित खबरें लाने वाले एक गंभीर पेशे के रूप में पहचाना जाने लगा, और इस पेशे को बढ़ावा देने के लिए 4 साल बाद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का गठन किया गया। आज के दिन दुनिया भर के खेल संघ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कई मीडिया संगठन इस दिन को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। खेल पत्रकार अपनी कड़ी मेहनत एवं चुनौतियों के बीच हमें दुनिया भर से खेल से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर हम तक पहुंचाते हैं, दिलचस्प तरीकों से खेल के बारे में बताते हैं, चाहे माध्यम टीवी हो, रेडियो हो या फिर समाचार पत्र। आज खेल के क्षेत्र में पत्रकारिता युवाओं को कैरियर बनाने का एक असीम संभावना को जन्म देता है। खेल पत्रकार प्रसारण और इंटरनेट सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। खेल रिपोर्टिंग में कई स्थानीय और राष्ट्रीय पत्रकारिता संगठन आज सक्रिय हैं। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

फिल्म लोफर का ये गीत था। आवाज मोहम्मद रफी की थी, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, इन दिनों श्रमिकों में न्यूरो की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका समाधान फिजियोथेरेपी में कैसे है संभव है, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं ये भेंटवार्ता। विषय है श्रमिकों में न्यूरो समस्याएं एवं फिजियोथेरेपी से समाधान। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर भारती और

0: बातचीत कर रही हैं पुष्पा तिवारी।
1: श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर हिमांशु शेखर भारती को। हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं श्रमिकों में होने वाली न्यूरो समस्याएं एवं फिजियोथेरेपी में समाधान। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रमिक बंधुओं को ये बताइए कि फिजियोथेरेपी क्या है।
2: फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामान्य एवं जटिल रोगों का निदान बिना किसी औषधि के, रासायनिक प्रयोग के, भौतिक यंत्रों द्वारा, व्यायाम द्वारा, योग द्वारा किया जाता है।
1: यानी दवा का सेवन नहीं होता और एक्सरसाइज से आप रोगों का निदान करते हैं।
2: जी, एक्सरसाइज के साथ हमारे यहाँ कुछ फिजिकल इक्विपमेंट हैं, जैसे शॉर्टवेव डायथर्मी, वैक्स बाथ, IFT, टेंस, फेराडिक स्टिमुलेशन, गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, ये समानता और सारे मशीन है जिससे हम लोग रोगों का इलाज करते हैं।
1: आप फिजियोथेरेपी की क्रिया जो है वो करते हैं। अच्छा, तो ये श्रमिक भाइयों में होने वाली न्यूरो समस्याएं क्या है?
2: समानता इसमें ये रोग जाने जाते हैं जो नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व में किसी भी प्रकार की इंजोरी या दुर्घटना या बीमारी के द्वारा क्षति हो जाती है। जैसे दुर्घटना के कारण स्कल का फ्रैक्चर हो जाना, रीढ़ की हड्डी टूट जाना या नर्व इंजोरी हो जाना और बीमारी। छोटे छोटे बच्चों में भी इस तरह की बीमारी होती है।
1: यानी न्यूरो शब्द से ही लगता है कोई नर्व की बीमारी।
2: जी जी जी जी।
1: अच्छा। तो ये समस्याएं आप और बता रहे थे क्या?
2: जैसे बीमारी के रूप में सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन के द्वारा नस की क्षति हो जाती है और कुछ न्यूरो समस्याएं सामने आती है।
1: कैसे?
2: जिसमें पोलियो प्रमुख है।
1: जी, पोलियो जो है वो न्यूरो समस्या है।
2: जी, ये प्रमुख समस्या थी पहले, जो आज के समय में धीरे धीरे लुप्त हो गई, समाप्त कर दिया गया।
1: तो इसका निदान भी फिजियोथेरेपी की मदद से होता है?
2: जी, पोलियो का 101% इलाज फिजियोथेरेपी के ही मदद से हुआ। आज जितने भी पोलियो ग्रस्त भाई बंधु चल फिर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का अहम रोल था, अहम योगदान था।
1: जी, आप बता रहे थे कि न्यूरो समस्याएं का भी निदान फिजियोथेरेपी में ही है, तो वो कैसे? अभी और कुछ आप कह रहे थे ना, श्रमिकों में होने वाली मान लीजिए हेड इंजरी है, उसके कारण या फिर किन कारणों से इंजरी जो आप अभी बता रहे थे ना? हाँ,
2: श्रमिकों में होने वाली हेड इंजरी के कारण जो बीमारी होती है या जटिलता आती है उनके अंगों में, उसको हम समानतः 2-3 भागों में बांटते हैं।
1: तो जरा प्रकाश डालिएगा इस पर।
2: जी जी, सबसे पहले तो दुर्घटना के कारण, अगर स्कल का फ्रैक्चर हो गया या किसी अंग का फ्रैक्चर हो गया या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया या नर्व इंजरी हो गया, हम लोग एक भाषा में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब वो इंजोर हो गया किसी कारण से,
1: रीढ़ की हड्डी
2: इंजोर हो गया, तो
1: मस्तिष्क हो,
2: हाँ,
1: और या कोई भी अंग भंग जैसे हाथ पांव ये सब भी
2: नहीं। हाथ पांव फिर ऑर्थोपेडिक के केस में चली जाती है।
1: यानी मस्तिष्क और
2: रीढ़ की हड्डी और नस, पेरिफेरल नर्व
1: जी,
2: जो हमारे अंगों में, पेरिफेरल नर्व हम उस नस को कहते हैं जो हमारे अंगों में काम करने की क्षमता देती है, महसूस करने की क्षमता देती है, वो नस अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो न्यूरो समस्या में आ जाती है।
1: अच्छा,
2: तो इसमें सबसे जटिल समस्या क्या आती है कि अगर ब्रेन स्कल का फ्रैक्चर हुआ या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ या पेरिफेरल नर्व इंजर्ड हुआ, तो उसका जटिलता पैरालिसिस के रूप में, जिसको हम लोग हिंदी में लकवा बोलते हैं, लकवा के रूप में शरीर में दिखाई देता है।
1: अच्छा,
2: और ये भी कई तरह का होता है।
1: यानी पैरालिसिस यानी लकवा
2: कई तरह का होता है। एक इसके भी कई प्रकार, जैसे मोनोप्लीजिया। अब मोनोप्लीजिया आप पूछेंगे क्या है, मोनोप्लीजिया में किसी एक ही अंग में पैरालिसिस होगा,
1: यानी चाहे जो पैरालिसिस है वो बहुत तरह से होता
2: जी,
1: है
2: जी।
1: एक अंग हो, दो अंग हो, एक तरफ हो, दूसरी तरफ हो, राइट हो, लेफ्ट हो, तो इसको जरा विस्तार से बताइए।

0: वही वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि मोनोप्लीजिया क्या हुआ, किसी एक अंग में या
1: जी
0: किसी दाएं हाथ में हो गया, बाएं हाथ में हो गया, या किसी
1: किसी
0: पैर में हो गया, ये मोनोप्लीजिया किसी एक अंग को ही
1: एक अंग
0: को वो क्षतिग्रस्त करेगा।
1: जी
0: डायप्लीजिया
1: वो क्या
0: किसी
1: है?
0: दोनों किसी दो अंग को वो क्षतिग्रस्त कर देगा,
1: जी
0: मुख्यतः इसमें अपर लिम्ब जैसे हाथ या ट्रंक इस तरह का क्षतिग्रस्त होता है।
1: अच्छा, लोअर भी होता होगा
0: जी जी
1: क्षतिग्रस्त?
0: जी जी उसको हम लोग पाराप्लीजिया बोलते हैं, जिसमें दोनों पैर समाप्त हो जाता है,
1: कमर से नीचे?
0: कमर से नीचे का दोनों पैर खत्म हो जाता है, सुन्न हो जाता है, जहां कोई ताकत नहीं रह जाती है।
1: जी
0: हेमिप्लीजिया, ये समानता बहुत ज्यादा इस तरह का केस आता है, वो क्या होता है बॉडी के हाफ साइड में पैरालिसिस हो जाता है, या तो राइट हो या लेफ्ट हो। अगर राइट में होती है तो फेस इफेक्टेड होता है।
1: अच्छा
0: जब पैरालिसिस होता है
1: जी,
0: तो अगर हमारा ब्रेन का लेफ्ट साइड इंजर्ड होगा तो पैरालिसिस दाएं साइड होगा, और अगर ब्रेन का राइट साइड इंजर्ड होगा तो
1: तो लेफ्ट
0: पैरालिसिस
1: साइड
0: पैरालिसिस
1: बाई तरफ।
0: लेफ्ट साइड होगा।
1: अच्छा,
0: जब हेमिप्लीजिया राइट साइड होता है तो उसमें फेस भी इफेक्टेड हो जाता है,
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे पेशेंट की आवाज चली जाती है, क्योंकि ब्रेन में हमारा जो वोकल पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में अवस्थित रहती है,
1: जी,
0: इसलिए वो भी साथ में चली जाती है।
1: यानी
0: और
1: वो शून्य हो जाएगा, सेंसलेस भी हो जाएगा
0: जी जी जी
1: पेशेंट?
0: जी हाँ, अंग जिस अंग में पैरालिसिस होगा वो अंग सुन्न हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगी, उस अंग के मसल्स की काम करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी।
1: अच्छा, तो फिजियोथेरेपी के
0: और
1: द्वारा इस बीमारी
0: नहीं
1: का क्या क्या इलाज है, कैसे संभव है?
0: देखिए, पैरालिसिस का सबसे मुख्य जो बचाव है, और मैं इलाज के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले बचाव के बारे में बात करते
1: बिल्कुल,
0: हैं कि
1: प्रिवेंशन
0: बचाव
1: इज
0: क्या
1: बेटर देन
0: बेटर देन
1: क्योर।
0: क्योर। हमको तनाव से बचना चाहिए। आज
1: जी
0: के भागदौड़ की जिंदगी में तनाव मुख्य कारण हो जाता है पैरालिसिस का। लोग क्या करते हैं, रेगुलर जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो गई उनको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करवाना चाहिए। अगर बीपी ज्यादा है उसका मेडिसिन लेना चाहिए। लोगों में ये धारणा है कि बीपी का मेडिसिन अगर मैं एक बार शुरू कर दूंगा तो पूरे लाइफ लेना पड़ेगा, ये अवधारणा गलत
1: ये
0: है।
1: तो बात सही है डॉक्टर साहब कि हम सब आज के आधुनिक युग में कामकाजी लोग तनाव में ही जीते हैं, और तनाव मुक्त होने के कारण आप कह रहे हैं जैसे दवा लेना, इसके अलावा आपने आप क्या कहा
0: योग
1: कुछ?
0: योग करना, मॉर्निंग वॉक करना,
1: जी,
0: मॉर्निंग वॉक से
1: सुबह
0: भी
1: शाम टहलना
0: टहलना।
1: जरूरी है।
0: अब जिसको सुबह में समय नहीं मिल पाए, जिस श्रमिक भाई को, वो शाम में अपने काम से आके खाना खा के 10 मिनट टहल लें, उससे भी मैं बीपी डाउन होता है। दूसरा नशा पान,
1: नशा नहीं करना
0: इस
1: चाहिए
0: रोग
1: किसी
0: का
1: को।
0: मुख्यतः कारण अभी के समय में समाज में नशा पान बिल्कुल बढ़ गया है, और ये
1: इस वजह
0: नशा
1: से ये
0: पान
1: बीमारी होती
0: ये
1: है,
0: बीमारी ज्यादा होती
1: यानी
0: है।
1: तनाव
0: नशा
1: से
0: में लोग काम
1: बचना
0: कर
1: है, नशा से बचना है, और रेगुलर एक्सरसाइज
0: रेगुलर
1: करना।
0: एक्सरसाइज नशा में लोग काम भी करते हैं,
1: जी
0: उसमें दुर्घटना ज्यादा होती है,
1: बिल्कुल, ध्यान
0: नशा
1: हटता है तो
0: ध्यान हटता
1: दुर्घटना
0: है।
1: हो जाती।
0: ये तो सीधी सी पंक्ति है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी,
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने
0: उसमें हमको बचना
1: सही
0: चाहिए।
1: कहा।
0: हाँ, अब हम लोग आए हैं कि फिजियोथेरेपी में इसका क्या निदान है।
1: जी
0: जब पैरालिसिस होता है तो अंग शिथिल हो जाता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले उसको पेसिव एक्सरसाइज देते हैं।
1: ये पैसिव एक्सरसाइज क्या है डॉक्टर साहब?
0: पेसिव एक्सरसाइज थेरेपिस्ट अपने हाथ से
1: जी
0: उस अंगों को
1: एक्सरसाइज कराता है,
0: एक्सरसाइज कराते हैं, या उस अंगों में गति प्रदान करते हैं
1: पेशेंट को
0: जो
1: कुछ नहीं
0: कुछ
1: करना
0: नहीं
1: पड़ता।
0: करना है, जी उस अंगों में गति प्रदान करते हैं जो शिथिल होती है।
1: जी
0: उसके बाद
1: धीरे धीरे
0: उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि वो फ्लेसिड स्टेज में रहता है, बिल्कुल
1: जी
0: मसल्स में कोई पावर नहीं रहता है, जिधर आप ले जाएंगे उधर गिर जाएगा
1: जी
0: अंग। तो उसको पहले हम लोग थोड़ा सा स्पास्टिक लाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा उसमें पावर लाने का कोशिश करते हैं, पैसिव एक्सरसाइज दे के धीरे धीरे उसमें टोनअप करते हैं, मसल्स को टोनअप
1: टोनअप
0: करते
1: हो
0: हैं,
1: जाएगा तो उसको बल मिल जाता
0: बल मिल
1: होगा जो।
0: जाता है।
1: जी
0: फिजियोथेरेपिस्ट और कुछ नहीं करता है,
1: जी
0: वो आपके मसल्स और नर्व को री एजुकेट करता है। फिजियोथेरेपिस्ट का मेन वर्क है री एजुकेशन ऑफ द मसल्स एंड नर्व फंक्शन
1: फिर से जिंदा कर दिया
0: इन द पैरालिसिस केस। हाँ,
1: जी
0: फिर से
1: जी
0: जिंदा कर देना, उसको फिर से तैयार करना, उसके मुंह में हम लोग एक्सरसाइज देते हैं, बार बार एक्सरसाइज देते हैं, तो वो मैसेज ब्रेन को जाता है और वो फिर फंक्शन में आ जाता है धीरे
1: जी जी
0: धीरे।
1: तो सेकंड स्टेज आप कुछ
0: सेकेंड स्टेज फिर हम लोग उसको एक्टिव असिस्टिव करते हैं। अब उसको बोलते हैं कि तुम कुछ करो, हम उसको असिस्ट करेंगे।
1: अच्छा, वो अपने

0: भी जोर लगाए,
1: जोर लगाए, अब हम सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये स्टेज जब पार हो जाता है तो मसल्स में 70% के आसपास पावर आ जाता है,
0: अच्छा।
1: वापस लौट जाता है पावर। उसके बाद हम लोग उसमें प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
0: वो क्या है?
1: वो एक्सरसाइज वो खुद करता है
0: जी।
1: हम लोग उसके एक्सरसाइज जो जिस फोर्स से वो कर रहा है उस फोर्स में एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस बाहर से वेट लगा के, अब बाय थेरेपिस्ट इन हैंड, अपने हाथ के द्वारा
0: जी।
1: जैसे अब
0: वजन,
1: हाँ, हाथ के द्वारा भी हम अपना पावर दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं
0: कि
1: हाँ हाँ एक्सरसाइज करो। ये इस तरह से धीरे धीरे उसके मसल्स को और टोन अप करता है। और अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर हमारे पास कुछ इक्विपमेंट है
0: जो उसके सहारे,
1: उसके सहारे हम लोग मसल्स और नर्व को टोन अप करते हैं। उसमें मुख्यतः फेराडिक स्टिमुलेशन है जिससे हम लोग टोन अप करते हैं। और अब हम लोग, ये तो इलाज की बात
0: इलाज
1: हो गई, हाँ। बात हो गई, थोड़ा उससे बचने का भी तरीका है।
0: बिल्कुल,
1: संतुलित आहार,
0: समाधान बताइए।
1: संतुलित आहार लें।
0: संतुलित आहार से आपका मतलब
1: शुद्ध खाना? हाँ, पौष्टिक खाना
0: जी।
1: पौष्टिक खाना, थोड़ा
0: खाने पीने पर,
1: जैसे श्रमिक भाई हैं, थोड़ा चना खाएं, थोड़ा मूंग खाएं, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, जिसको हम लोग देसी भाषा में संतुलित आहार विहार बोलते हैं।
0: आहार विहार दोनों पर ध्यान देना,
1: ध्यान दें। तनाव कम करने के लिए योग करें, थोड़ा ध्यान करें, ये सब काम करना चाहिए। और श्रमिक भाई जब काम करने जाते हैं तो वो कंपनी में घुसते ही तनाव में आ जाते हैं कि मुझे बहुत काम करना है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, काम को अपने जीवन का अंग माने।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने ये जो फिजियोथेरेपी से द्वारा इस बीमारी के इलाज के बारे इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आप हमारे श्रमिक बंधुओं के लिए आखिर में कुछ संदेश देना चाहते हैं?
1: संदेश, सबसे पहले नशा सेवन छोड़ा जाए
0: जी।
1: नशा मुक्त जीवन जिए, तनाव कम करे। जो ही वो नशा कम करना शुरू करेगा तनाव धीरे धीरे
0: कम
1: हो जाएगा। और तनाव कम करने का दूसरा तरीका है मॉर्निंग वॉक करे, मॉर्निंग में नहीं हो तो इवनिंग वॉक करे, और योग करे, ध्यान करे
0: जी।
1: और समय समय पे अपना हेल्थ चेकअप, 40 वर्ष से जिनका ज्यादा उम्र हो गया वो नियमित रूप से ब्लड प्रेशर का जांच कराएं, और जो कराएं और पैरालिसिस से बच सकते हैं वो।
0: यानी स्वस्थ जीवन के लिए आपने बड़ी अच्छी बात हमारे श्रमिक बंधुओं को बताई। डॉक्टर साहब, आपसे तो बहुत बातें करने की इच्छा हो रही है, लेकिन समय अभाव के कारण हम अपने बातचीत का को यहीं विराम देते हैं। और आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी उपयोगी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रमिकों में न्यूरो समस्याएं एवं फिजियोथेरेपी से समाधान, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हिमांशु शेखर भारती। और आइए, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजनबी का ये गीत बोल। स्वर लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार का है, शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने ये स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक

0: मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: झारखंड के लोकगीत इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राकेश कुमार किशोर को, उनसे सुना अपने पंच परगनिया लोकगीत। इसके साथ ही यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः, तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन 2022 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमय

0: स्वीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमन्त्रिणा सानेता काइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धिन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकायची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति, तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं सङ्कल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमान समये समग्रं विश्वम् आपूर्ति श्रृङ्खलावरोधैः, व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के

0: खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22.8 लाख तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरं आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूति वीबीजी रामजी अधिनियम 20-25 आजीविका सुनिश्चितताया ग्रामीणाजीविकाया सुदृढ़ीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांशभागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशः 2000 वर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पंजीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
2: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत थोड़ी ही देर में। पुलिस
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजोकर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा से।

किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत समसामयिक चर्चा से करेंगे। हम चर्चा करेंगे बरसात में पशुओं में होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव के लिए टीकाकरण विषय पर। किसान भाइयों, झारखंड के मवेशियों मसलन गाय भैंस भेड़ बकरियों में बरसात के दिनों में कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। हमें इन बीमारियों से अपने पशुओं को बचाने के लिए बरसात के पूर्व ही टीकाकरण आवश्यक रूप से करवा लेनी चाहिए। बरसात में होने वाली बीमारियों में पशुओं में मुख्य रूप से गलघोटू बीमारी, ये गाय और भैंस में बहुतायत होती है। ये एक बैक्टीरियल रोग है। इसमें पशु को तेज बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में सूजन हो जाता है। दूसरी बीमारी है लंगड़ी बुखार। इसमें पशुओं की पिछली टांगों की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और पशु लंगड़ा कर चलने लगते हैं। वहीं तीसरी गंभीर बीमारी है खुरपका मुंहपका। ये एक वायरस जनित रोग है जिसमें मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं। पशुओं के मुंह से लार टपकते हैं और वो चारा खाना छोड़ देते हैं। पशुपालक भाइयों, इन बीमारियों के लक्षण दिखे तो समय पर आप समझ लीजिए कि पशु खतरनाक बीमारी के चपेट में है। इसलिए बरसात से पूर्व ही आप इस बीमारियों का टीकाकरण अवश्य करवा लें। गलघोटू के लिए आप HS वैक्सीन है जिसे मानसून से पूर्व लगवाया जाता है। वहीं लंगड़ी बुखार के लिए BQ वैक्सीन है, इसे भी बरसात से ठीक पहले लगवानी चाहिए। और खुरपका मुंहपका के लिए FMD के टीके आते हैं जिसे साल में दो बार बरसात से पूर्व और सर्दियों के पहले पशुओं में जरूरी जानकर लगा लें तो आपको आपके पशु जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे।

इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद अब कुछ बातें वर्षा जल संचयन की। किसान भाइयों, वर्षा जल संचयन इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर किसान भाइयों घटते जा रहे हैं, जल स्तर दिनों दिन घटते जा रहे हैं, जिसमें सुधार के लिए वर्षा जल का संचयन बहुत जरूरी है। इसके अलावा पीने के पानी की कमी को पूरा करने और बाढ़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए भी सबसे प्रभावी और सस्ता प्राकृतिक उपाय वर्षा जल का संचयन है। किसान भाइयों, बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने से जलस्तर ऊपर उठता है, जिससे बोरवेल और नलकूप सूखने से बचते हैं। आप संग्रहित वर्षा जल का उपयोग दैनिक कार्यों, मसलन बागवानी, सफाई और कपड़े आदि धोने में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब बारिश का पानी नालों में बहकर बर्बाद होने के बजाय संग्रहित होता है तो निचले इलाकों में जल भराव या बाढ़ का जोखिम कम हो जाता है। वैसे बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध और खारापन से मुक्त होता है, यह पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। वहीं जल संचयन से पानी को दूर दराज

आज से लाने और पंप करने में लगने वाली ऊर्जा और बिजली की भारी बचत भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग समय की मांग है, जिसे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनानी चाहिए।

0: और इस चर्चा के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं भेंट वार्ता। आज का हमारा भेंट वार्ता का विषय है कृषि उत्पादन बढ़ाने में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं NIT जमशेदपुर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह और इनसे भेंट किया है विवेकादित्य ने। लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खास विषय को और वो विषय है AI का। जी हाँ श्रोताओं, AI जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जा रहा है और AI की चर्चा हर तरफ चल रही है और आज हम बातें करेंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए कृषि क्षेत्र को देखते हुए AI की क्या भूमिका हो सकती है और यह हमारे किसानों के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है। इसी विषय पर एक खास बातचीत को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और आज के कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं एक खास मेहमान और वो हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के कंप्यूटर संकाय के प्रभारी डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह। नमस्कार महोदय, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: महोदय। AI की चर्चा हर तरफ काफी हो रही है लेकिन आज हम बातें करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो कृषि में AI का क्या अर्थ है और यह हमारे किसान भाई बहनों के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है।
2: जैसा कि सब लोग हम लोग जानते हैं कि वर्तमान दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य के जीवन पद्धति को हर तरह से प्रभावित किया है, तो किसान भी मनुष्य के जीवन का सबसे उपयोगी चीज जो है उसकी उत्पादन करते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनकी भी जीवन शैली और उनकी उत्पादकता को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है। जैसे अभी एक आंकड़ा आया है कि US डॉलर में 2023 में जो प्रोजेक्शन था टोटल इकोनॉमी का कृषि के क्षेत्र में वो 1.7 बिलियन US डॉलर एंड वो 2028 में बढ़ के 4.7 बिलियन US डॉलर हो रहा है, मतलब 23.1 टोटल ग्रोथ हुआ है। तो ये बताता है कि कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि के क्षेत्र को किस तरह से आने वाले समय में प्रभावित करने जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा कि जो हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं वो पारंपरिक खेती जो हमारे भारत में प्रचलित है उसको प्रभावित करेगा और ये परंपरागत नहीं होते हुए कृषि को और फसल को बहुत सटीक उपाय देगा। जैसे कि एक एग्जांपल से चलते हैं कि आपके पास कोई खेत है, कोई फसल आप लगाए हैं, रबी हो या धान की फसल हो, और हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें करते हैं हम लोग अभी क्या कि अगर कीटनाशक हम लोग देते हैं तो पूरे खेत में इक्वल मात्रा में हम लोग बराबर मात्रा में उसको हाथ से छिड़काव करते हैं, तो वो चीजें अगर उससे क्या होगा जब हम लोग AI का प्रयोग करेंगे तो जो अफेक्टेड पार्ट है खेत का उसी पार्ट में सटीक रूप से केवल उतना ही दूर हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और जो दवा का पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट है वो भी कम होगा। तो इस तरह से कृषि में बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम लोग बातचीत में आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज कर सकते हैं।
1: महोदय, बिल्कुल सही बात कही आपने कि कृषि में AI काफी अपनी भूमिका निभा सकती है और अगर हम बातें करें मौसम पूर्वानुमान की या फिर फसल प्रबंधन की जो कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफी जरूरी है, तो इसमें AI तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो मूल अवधारणा है उसके पीछे वाली डेटा जो है वो बहुत जरूरी होती है, मतलब पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। तो मौसम पूर्वानुमान से फायदा ये होगा कि मौसम पूर्वानुमान में हमारे पास पिछले कुछ दिन के डेटा होते हैं कि कितनी बारिश हुई, कितना धूप हुआ, कितनी टेम्परेचर थी, हवा क्या था, उस तरह से उस पर हम लोग AI मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में मौसम कैसा होगा। तो ये हमको सटीक जानकारी मिलेगी क्योंकि ये जितने हैं रियल टाइम हमको फोरकास्टिंग होती है और उससे फायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए याद होगा गेहूं की खेती होती है और जब फसल पक जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि अचानक हम लोग यहाँ जब हम लोग बच्चे थे तो अचानक बारिश हो जाती थी, उसके बाद अगर फसल गिर जाता था या भीग गया तो फिर किसी काम का गेहूं नहीं रहता। तो अगर हमको पूर्वानुमान पहले से हो जाए तो किसान समय पर कोई उपाय करके अपने फसल को बचा सकते। तो AI के प्रयोग से अगर सटीक हमको पूर्वानुमान मौसम का होगा और ये फसलों को बचाने में या फिर मौसम साइकिल जैसे चेंज हो रहा है तो उसमें भी फसल का नेचर कैसे हम चेंज करेंगे, कौन सा फसल लगाएं, ये दोनों संतुलित रहेगा और इससे कि हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी और हम अपने फसल को बचा भी पाएंगे।
1: हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो फसल होते हैं उसमें रोग या फिर या जो कीट का जो प्रकोप होता है वो काफी नुकसानदायक साबित होता है, तो ये फसल के जो रोग होते हैं या फिर उसमें जो कीट नियंत्रण की जो बात की जाती है तो इसमें AI तकनीक किस प्रकार सहायता कर सकती है?
2: एक्चुअली आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, कीट और रोग का जो नियंत्रण है इसको ऑटोमाइज AI के थ्रू हम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कीट से कोई फसल इफेक्ट होता है तो उसके कलर चेंज होते हैं और कलर चेंज होगा, साइज चेंज होगा, तो उसमें क्या है बहुत बार हमारे किसान मित्र जो हैं किसान भाई लोग वो एक्सपर्ट नहीं होते, तो जैसे हमने उसका फोटो लिया कंप्यूटर विजन के टेक्नोलॉजी के मदद से हम उसको जो भी कीट है या रोग लगा हुआ है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये बीमारी है, उसी के अनुसार उसमें हम दवा का प्रयोग करेंगे। और थोड़ा सा तकनीक अगर यूज करें, ड्रोन का यूज करें, रोबोट का यूज करें, तो हम उन चीजों को जो अफेक्टेड पार्ट है जिसको प्रिसाइज बोलते हैं तो वो अफेक्टेड पार्ट को हम केवल अलग करें, रिमेनिंग चीजें हमारी फसल वैसी की वैसी रहेगी। तो इस तरह से AI का हम प्रयोग कर सकते हैं उसको कीटनाशक, और ये बहुत अच्छा एक भारत सरकार ने पोर्टल भी शुरू की है, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, एक उनका योजना है भारत सरकार की नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, जिससे कि वो लोग कीटनाशक के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं और इससे फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है, मतलब जो भी हमारे आउटकम्स आते हैं उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, तो इस तरह से AI का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं।
1: महोदय, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी कि रोबोटिक्स भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है, तो अगर हमारे कृषि क्षेत्र में AI आधारित जो रोबोटिक्स की बात की जा रही है उसका क्या उपयोग हो सकता है?
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहयोग से हम स्वचालित खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे एक दो वीड कंट्रोल के लिए एक भारत में निर्मित रोबोट है जिसका नाम है कृषि बोट, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए भी है भारत एग्रो रोबोट, ये भी यूज है, बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है बट मार्केट में दोनों अवेलेबल है। तो इससे फायदा ये होगा कि जैसे हम अभी क्या करते हैं, जो वीट का प्रयोग करते हैं किसान हाथ से खेत में जाके और उसको उखाड़ता है, तो इसमें दो समस्या आती है कि एक तो किसान वो चूंकि कीटनाशक होते हैं तो वो फायदेमंद इनके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है और हम बहुत अच्छी तरीका से सटीक रूप से उसको नहीं रिमूव कर पाते। रोबोट खेत में जाता है और उसके बाद जो वो कलर बेस्ड कंप्यूटर विजन बेस्ड मेथड्स होते हैं कलर देख के वो कीटनाशक जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको काट के स्वचालित रूप से हटा देता है, तो इससे फसल की बर्बादी भी कम होती है और साथ ही साथ किसान के स्वास्थ्य पर भी असर रहता है, उनके भी को भी साइड इफेक्ट से बचाता है। तो इस तरह से रोबोट बहुत ही यूजफुल है और मार्केट में बहुत सारे जैसे विदेशों में बहुत सारे रोबोट यूज करते हैं बट हम लोग अभी उस स्तर पर प्रयोग अपने यहाँ खेतों में नहीं बढ़ी है क्योंकि हम उतनी सीढ़ी नुमा और व्यवस्थित रूप से खेती अभी नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा चलने में रोबोट को खेत के बीच चलाने के लिए अच्छी खासी जगह और उसको सिस्टमेटिकली फसल को क्रॉप करना पड़े।
1: महोदय, ये तो बातें हुई रोबोटिक्स की और आजकल एक चर्चा ड्रोन टेक्निक की भी बातें की जा रही हैं या फिर प्रिसीजन फार्मिंग की भी बातें की जाती है, तो ये ड्रोन टेक्निक और जो प्रिसीजन फार्मिंग की बातें की जाती हैं तो इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या लाभ हो सकता है?
2: ड्रोन टेक्नोलॉजी से दो फायदा, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि रोबोट को खेत में चलाने के लिए हमको व्यवस्थित रूप से नाली नुमा या कोई जो क्रॉपिंग करेंगे वो करते हैं, तो लेकिन उसका रिप्लेसमेंट ड्रोन है कि अगर ड्रोन का प्रयोग करें तो दो चीजें होती है, एक तो कि खेत के अंदर किसान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो फसल नष्ट कम होते हैं और दूसरा है कि हम प्रिसाइज रूप से जो अफेक्टेड पार्ट है बस वहीं पर उसका हम प्रयोग करें, छिड़काव करें, या फिर जैसे खेत बहुत बड़ा है या बहुत बार मक्का की खेती में देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा मक्का हो जाता तो अंदर जाने में दिक्कत होती है, गन्ना के खेत जो ऊंचे या दलहन है, तो उस केस में क्या होगा कि ड्रोन का हम यूज करेंगे तो इमेज प्रोसेसिंग के मेथड्स होते हैं वो फोटो लेते हैं और हम अपने एक जगह बैठ के हम पूरे खेत

0: को हम देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं कि फसल कैसा हो रहा है, क्या है, कहीं अगर अफेक्टेड है तो फिर हम उस प्रिसाइज लोकेशन पर हम जा सकते। तो ये ड्रोन से फायदे हैं, कृषि के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बट इसकी प्रचलन बढ़ानी पड़ेगी। अपने यहाँ इसका प्रचलन उतना नहीं है, तो किसानों को जागरूक करने के साथ ही इसके प्रयोग के तौर तरीके बताने पड़ेंगे।
1: बिल्कुल सही बात है कि आधुनिक तकनीक से जुड़ करके किसान भाई बहनों को काफी फायदा हो सकता है। और आजकल एक शब्द चर्चा में सुनने को मिलता है कि हमारे किसान भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। तो जो आजकल AI की बातें की जा रही हैं या फिर रोबोटिक्स की बातें की जा रही हैं, तो ये दोनों तकनीक हमारे किसान भाई बहनों को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं?
0: अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग धड़ल्ले रूप से करने लगेंगे, तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि प्रिसाइज खेती, मतलब एकदम सटीक खेती, तो इससे पहले हम लोग 2-3 बार ये चर्चा किए कि ये जरूरी नहीं है कि पूरी खेत में कीट का प्रयोग हर जगह सामान्य रूप से बट हम जब परंपरागत खेती में जाते हैं तो कीटनाशक का प्रयोग करें या जो भी सिंचाई करेंगे या फिर दवा का छिड़काव करेंगे या यूरिया देंगे, तो पूरे खेत में बराबर रूप से देते। तो ये जरूरी नहीं है कि हर इफेक्ट हर एरिया में खेत के हर तरफ बराबर ही यूरिया या कीटनाशक का प्रयोग करना है। तो अगर हम AI का यूज करेंगे तो वो आपको बताएगा कि नहीं, इस तरफ पानी की मात्रा कम देनी है, इस तरफ दूसरे तरफ पानी की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ कीटनाशक का प्रयोग करना है, एक पार्ट में कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि लागत कम हो, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये सुनते होंगे कि यूरिया का प्रयोग करने से खेत की उर्वरा कम होती है। तो इसलिए अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूज करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस क्षेत्र में यूरिया नहीं देनी है, खेत के इस पार्ट में यूरिया नहीं देनी है, बस इसी पार्ट में देनी है, तो हमारा बचत होगा। हम लोग जब फसल को सींचते हैं तो अभी भी हमारे यहाँ परंपरागत रूप से पूरे खेत को इक्वल पानी देते हैं, बराबर रूप से पानी देते हैं। तो अगर हम IoT का यूज करेंगे, स्वचालित सिंचाई का यूज करेंगे, तो जहां जरूरत होगी, जितना पानी की जरूरत होगी उतना ही पानी होगी, तो फिर वहां से बचत होगा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कंट्रोल्ड होगा, और इससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी, खर्च कम लगेगा, तो ऑब्वियसली उनकी सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो आत्मनिर्भरता की तरफ वो लोग भी जाएंगे।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी महोदय आपने। और अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: कि तकनीक का प्रयोग करें और मेहनत करें, तकनीक के साथ मेहनत करें, तो हमें अच्छी आप रिजल्ट मिलेगा, आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी, लेकिन सबसे जरूरी मेहनत करना है कि मेहनत करें और फिर तकनीक का प्रयोग करें।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमारे किसान भाई बहनों के लिए या फिर हमारे श्रोताओं के लिए, जो AI से जुड़ करके अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते हुए कृषि क्षेत्र में किसान भाई बहनों को जरूर मदद पहुंचा सकते हैं। और इस अच्छी जानकारी के लिए आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, कृषि उत्पादन बढ़ाने में AI की उपयोगिता। जानकारी दे रहे थे NIT के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक मैथिली लोकगीत शारदा।

आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा से एक कजरी। और अब कुछ बातें वन महोत्सव की। ग्रामीण श्रोता मित्रों, वन महोत्सव अर्थात पेड़ों का उत्सव भारतवर्ष में हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पौधारोपण अभियान है। इसकी शुरुआत सन 1950 में डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को वनों के संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। श्रोता मित्रों, पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है। ये त्योहार वनों की कटाई को रोकने और हरित आवरण को बढ़ाने का संदेश देता है, जो एक स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अब कुछ बातें बरसात में होने वाली सब्जियों का प्रबंधन विषय पर। किसान भाइयों, सब्जियों के प्रबंधन की जहां तक बात है, जुलाई से सितंबर तक के महीने में सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है। अगर हम इनका ढंग से प्रबंधन करें तो ये हमें ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। आप जल निकासी की उचित सहारा यानी मचान विधि और कीट रोग का प्रबंधन कर इस मानसून सीजन की फसलों को देर तक सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय आप हमेशा सब्जियों की खेती मेड़ों पर करें, समतल जमीन पर नहीं करें। इससे भारी बारिश में भी सब्जियों की जड़ें सड़ेंगी नहीं और देर तक फलन होता रहेगा। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि जगत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने को मिली नीतिगत मंजूरी। कुल 27 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। SIR के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भरा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रपत्र। राज्य के पात्र मतदाताओं से समय पर सत्यापन कराने की अपील। हजारीबाग ओपन जेल मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बने PM सूर्य घर योजना के लाभुक। रांची स्थित आवास पर लगवाया सोलर पैनल। नागरिकों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान। और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे 25 नए वाहन। सुदूर क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आएगी तेजी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को राज्य में लागू करने की नीतिगत मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने फैसलों की जानकारी दी।
1: प्रस्ताव संख्या 7 है, ग्रामीण विकास।

0: भाग से झारखंड राज्य में वीबीजी रामजी योजना को लागू करने की नीतिगत स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि पीवीटीजी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करेंगे।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने अपने प्रपत्र भरकर जमा किए। लोकभवन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की मौजूदगी में राज्यपाल ने, जबकि आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने प्रपत्र भरे। दोनों शीर्ष नेताओं ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से समय पर मतदाता सूची का सत्यापन कराने की अपील की। राज्य में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों यानी FAQ का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें प्रवासियों और छात्रों के लिए नियम स्पष्ट किए हैं। राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर और छात्र अब वोटर्स पोर्टल पर ऑनलाइन अपना गणना प्रपत्र भर सकेंगे। जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले की लीपापोती करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। उन्होंने घटना के वक्त मौजूद पुलिस कर्मियों व असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
3: सरकार के अनुमति के बाद ही वहाँ पर बाद में संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार से फर्जी मुकदमा करके जनता के बीच में जो लफहमी पैदा करना पुलिस प्रशासन की झारखंड मांग हुई है। दोनों माँ बेटी तनाव भरी जिंदगी जीने का मजबूर हो गई, इसलिए केस को दबाने के लिए मन गढ़ आरोप गठित करने का काम न करें, निर्दोष व्यक्ति को सजा देने का काम प्रशासन न करे।
1: आजसू महिला मोर्चा ने आगामी 4 जुलाई को आयोजित होने वाले अखिल झारखंड महिला अधिवेशन को लेकर आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अधिवेशन खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाएं शामिल होंगी। महिला सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुदेश महतो होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज 3 अलग अलग मामलों पर अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने हजारीबाग ओपन जेल मामले में राज्य सरकार को आगामी 20 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं बोकारो की लापता नाबालिग मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए CBI को पक्षकार बनाया गया है। एक अन्य फैसले में कोर्ट ने गढ़वा उपायुक्त को वर्ष 1992 में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द देने का कड़ा निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभुक बन गए हैं। उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
4: हम जहाँ एक तरफ बिजली जनरेट करेंगे, दूसरी ओर हम कितने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इतना फायदा दे रहे हैं। मैं झारखंड की जनता से, विशेषकर जितने सरकारी राज्य सरकार के कार्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालय जितने हैं और आम लोग, वो लोग हॉस्पिटल है, वो सब सोलर पैनल लगवाएं ताकि बिजली की खपत कम हो, पर्यावरण को संरक्षण भी हो और डीजल पेट्रोल और कोयले की बचत।
1: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विभाग की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 25 नए वाहन सौंपे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीडीओ को नए वाहन मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
5: ब्लॉक तक जाने में 45 मिनट एक घंटे का समय और जिला मुख्यालय तक जाना 1.5 से 2 घंटे का रास्ता सड़क खराब होने की वजह से स्थिति होती थी। तो मुझे पूरा भरोसा है इस संसाधन को, आप लोगों के काम को, आपके परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है, उसका आप लोग बेहतर इस्तेमाल करेंगे।
1: दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्पीड पोस्ट से ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पत्र पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से भेजा गया है। पुलिस मामले की गहन जाँच में जुटी है। धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने आज पहली बार दागी अपराधियों की सामूहिक परेड कराई। पुलिस लाइन में आयोजित इस परेड में सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई और उनके वर्तमान रहन सहन की समीक्षा की गई। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को सुधरने की आखिरी चेतावनी दी। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। गुमला में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय के जुबली स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने इसका उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 बालक वर्ग के मुकाबले खेले गए। इस आयोजन में जिले के सभी 12 प्रखंडों की विजेता टीमें हिस्सा ले रही है, जिसका उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए खेल प्रतिभाओं का चयन करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने को मिली नीतिगत मंजूरी। कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति। एसआईआर के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भरा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रपत्र। राज्य के पात्र मतदाताओं से समय पर सत्यापन कराने की अपील। हजारीबाग ओपन जेल मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार के 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बने पीएम सूर्य घर योजना के लाभुक। रांची स्थित आवास पर लगवाया सोलर पैनल। नागरिकों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान। और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे 25 नए वाहन। सुदूर क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आएगी तेजी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन ये सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो घाटों में हुल दिवस पर आदिवासी समाज द्वारा अमर शहीदों को याद किया गया, साथ ही महिलाओं के लिए तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सह अबुआ दिसोम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू एवं टाटा स्टील के महाप्रबंधक ने वीर अमर शहीदों सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू सहित शिवू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि देकर किया। इस हुल दिवस के अवसर पर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने रामगढ़ के कई जगहों पर सभाओं के माध्यम से इन अमर शहीदों को नमन किया और हुल क्रांति की अमर गाथा

0: इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांति लाया और क्रांति का आज हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं कि उनका जो बलिदान रहा, उनका जो संघर्ष रहा इन लोगों का, समाज के माध्यम से हम भूल नहीं सकते हैं, उनको हमेशा याद करेंगे।
1: रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पर आयोजित एक नेशनल सेमिनार में पिछले दिनों भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शिरकत किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि जल्द ही गांव-गांव और घर घर जाकर जाति आधार पर जनगणना कराई जाएगी। मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रही बड़ी प्रगति पर जोर दिया और बताया कि आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास इसके लिए 600 से 650 छात्रों का आवेदन आते हैं। इसके माध्यम से छात्र अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे कई देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं।
2: शिक्षा में बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस की स्कीम है, उसमें 600-650 स्टूडेंट से एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं। अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो, अनेक देशों में वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं।
1: रामगढ़ जमीन विवाद मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 अपराधियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पत्रातु के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया है। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के द्वारा जो 11 डिसमिल जमीन ली गई थी, उसी को लेकर विवाद था और उसी में यह घटना घटी है।
3: घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को बुलाते हुए घटनास्थल से पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया गया और अभी तक की पूछताछ में जमीन की विवाद में हत्या करने की बात सामने आई है।
1: रामगढ़ में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के नए तरकीब कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
4: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक खेल पत्रिका खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी।
2: खेल प्रेमी श्रोताओं को राजीव का नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में।
1: शुरुआत सामयिक विषयों पर बातचीत से।
2: आज के अंक में हम बातें करेंगे फुटबॉल में चल रहे फीफा विश्व कप की, साथ ही क्रिकेट में चल रहे महिलाओं के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की, भारतीय पुरुषों के क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे की, हॉकी में चल रहे FIH हॉकी प्रो लीग की, टेनिस में चल रहे विंबलडन की और एथलेटिक्स में भुवनेश्वर में खेले जा रहे 65वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। दोस्तों, फुटबॉल के फीफा विश्व कप 2026 अब अपने नॉकआउट चरण में पहुंच गया है, जहां राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। अब जो भी टीम मैच गवा रही है उसका विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह जा रहा है। राउंड ऑफ 32 में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दो सबसे बड़े उलटफेर देखने को मिले। सबसे बड़ा उलटफेर जर्मनी और पैराग्वे के बीच देखने को मिला, जिसमें पैराग्वे ने शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से हराकर जर्मनी का सफर यहीं समाप्त कर दिया। मैच में निर्धारित अवधि में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर रही। शुरुआती गोल पैराग्वे की तरफ से आया जब पहले हाफ के 42वें मिनट में एनसीसो ने शानदार गोल करते हुए जर्मनी पर 1-0 की बढ़त दिला दी, पर यह बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रही और मैच के 54वें मिनट में जर्मनी के हावर्ट्ज ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। अब मैच का फैसला शूटआउट से हुआ, जिसमें जर्मनी की तरफ से किमिच, मुसियाला और अमीरी ने ही अपने मौकों को गोल में कन्वर्ट कर पाए। वहीं पैराग्वे के गोलकीपर गिल ने शानदार दो बचाव किए। वहीं पैराग्वे की तरफ से मेरिसिओ गोमेज, गलार्जा और कनाले ने गोल कर मैच को अपनी झोली में डाल दिया। वहीं राउंड ऑफ 32 का दूसरा उलटफेर नीदरलैंड और मोरक्को के बीच देखने को मिला। टूर्नामेंट में फेवरेट माने जाने वाली नीदरलैंड की टीम यह मैच शूटआउट में 3-2 से हार गई। मोरक्को ने पूरे मैच में शानदार डिफेंस और अटैक का प्रदर्शन किया। वहीं नीदरलैंड की टीम पूरे मैच में गेंद के लिए जूझती नजर आई। वहीं इनके अलावा राउंड ऑफ 32 के अन्य मुकाबलों में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया तो ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराया। नॉर्वे ने कोट डी आइवोर को 2-1 से पराजित किया तो फ्रांस ने स्वीडन को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हराया। वहीं मेक्सिको ने भी इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली। वहीं कल के अन्य मुकाबले में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा तो बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और यूएसए ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अगले राउंड में अपना स्थान सुनिश्चित किया। अब राउंड ऑफ 32 के बाकी बचे हुए मुकाबलों में स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से, पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से, स्विट्जरलैंड का सामना अल्जीरिया से, ऑस्ट्रेलिया का सामना मिस्र से, कोलंबिया का सामना घाना से और अर्जेंटीना का सामना केप वर्दे से होगा। वहीं इस विश्व कप में अब तक कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बने और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स टूटे हैं, जिसमें सबसे खास सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड रहा। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में अब तक 215 से ज्यादा गोल हो चुके हैं, जो कतर में हुए 2022 वर्ल्ड कप के कुल 172 गोलों के पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ चुका है। वहीं मेसी ने अपना वर्ल्ड कप गोलों का आंकड़ा 19 तक पहुंचा दिया है और वह इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी 6 अलग अलग वर्ल्ड कप संस्करणों में गोल करने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में भले भारतीय टीम नहीं खेल रही है, पर भारतीय प्रशंसकों में उत्साह की कमी देखने को नहीं मिली और फुटबॉल के एनालिस्ट भी इस पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। और इसी विश्व कप पर विशेष बात करने के लिए आज हमारे साथ AIFF के रेफरी असेसर नवीन सुंडी जी बने हुए हैं। तो चलिए आप सबको लिए चलते हैं उनके पास।
3: नमस्कार श्रोताओं, जैसा हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल में फीफा विश्व कप 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से आ गया है हम सभी दर्शकों और हम सभी प्रशंसकों के बीच में, और कई बेहतरीन मुकाबले खेले गए हैं, कई बेहतरीन मुकाबले खेले जा रहे हैं। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले अभी चल रहे हैं जिसमें कई शानदार मुकाबले देखने को मिले, और इन सभी चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं जो AIFF इंटरनेशनल रेफरी एसेसर नवीन सुंडी जी हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
4: सभी श्रोताओं को और आपको भी नमस्कार राजीव जी और जोहार। बहुत ही आनंद की विषय है कि हम लोग इस विशेष अवसर को एक अच्छे वार्तालाप में बदलने जा रहे हैं।
3: जी नवीन जी, राउंड ऑफ 32 की बात करें तो कई शानदार मुकाबले देखने को मिले जिसमें एक दो बड़े उलटफेर भी हुए, जिसमें जर्मनी वाला मुकाबला पैराग्वे ने जर्मनी को शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। क्या कुछ रहा उस मुकाबले के बारे में, या कुछ अपने विशेष अंदाज में उसकी कुछ समीक्षा करें तो?
4: जी राजीव जी, अगर कहा जाए तो मैं बहुत ही थोड़ा सा सॉफ्ट रहा इस रिजल्ट को सुन करके कि जर्मनी जैसा बहुत ही मजबूत मैंने कंटेंडिंग टीम है वर्ल्ड कप के लिए थे, लेकिन उसे पेनल्टी शूटआउट में दुर्भाग्यवश बाहर होना पड़ा। लेकिन खैर, ये खेल का एक भाग है, जीत और हार तो लगी रहेगी। लेकिन हाँ, हम भी इस बात से सहमत है कि एक अच्छे टीम का बाहर निकल जाना दुखद होता है। साथ ही साथ मेरे लिए और एक दुखद बात थी कि हमारी एशियन कंट्री जो कि हम एशियाई प्रांत से बिलोंग करते हैं, तो हमें भी एक अलग रुझान रहता है कि नहीं, हमारी एशियन टीम्स में कुछ टीम जो जरूर है एक राउंड ऑफ 16 तक जाए। और ऐसा जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद जापान एक बहुत ही अच्छा प्रतिबंधी टीम साबित हो रही थी, उन्हें भी अंततः बाहर निकलना पड़ा। हमारी कोरियन टीम बाहर हुई, लेकिन खैर हमारे लिए गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया भी कंटेस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया आने वाले दिनों में एक अच्छा कहा जाए कि अपना प्रदर्शन करे, और हम उसकी शुभकामना देते हैं कि एशियन कंट्री में वो हमारे लिए एक अच्छा झंडा बुलंद करके रखे ताकि हम आने वाले 16 अंतिम 16 में उन्हें जगह बनाते हुए देखने पाए।
3: जी नवीन जी, एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब नीदरलैंड की टीम, जिसको इस वर्ल्ड कप का फेवरेट टीम में से भी रखा जा रहा था,
4: मोरक्को से
3: हार गई, और वो भी शूटआउट में, और वो भी सेम डे जिस दिन जर्मनी बाहर हुई उसी दिन नीदरलैंड बाहर हुई। ये वर्ल्ड कप कुछ अलग अंदाज में दिख रहा है, क्या लगता है आपको?
4: बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल इस बार की जो बहुत सारी विशेषज्ञों की जो मैंने प्रेडिक्शन थी, ये टीम आएगी, लेकिन खेल का इस तरह का रुझान देख करके ऐसा लग रहा है कि इस बार तो कुछ नई चैंपियनशिप की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रतिबंधी के रूप में एक अच्छा स्टैंड बनाने पड़ी। कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनकी नाम हमने कभी सुनी नहीं, लेकिन आप देखो कि उनका प्रदर्शन कितना सराहनीय है, और वे अंतिम 32 तक आए हैं। अब उम्मीद है कि शायद 32 से आगे 16 तक चले जाए। जैसा बोस्निया की छोटी कंट्री, हालांकि वो भी हार के 32 में जगह बनाई, कोस्ट डी आइवरी नॉर्वे से मात्र 2-1 से हारी, तो इन सब चीजों को इक्वाडोर मैक्सिको को बहुत कंटेस्ट किया, लेकिन अन्यथा मैक्सिको का मुकाबला अगला कल जो इंग्लैंड की मैच थी रात में डीआर कांगो के साथ, इतना सुंदर हाफ टाइम तक हमने देखा कि कांगो लीड कर रही थी
3: 1-0 से
4: आगे थी, लेकिन अंतिम विसिल बजते बजते हमने देखा कि इंग्लैंड के केन जो कि विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है, अपना अच्छा प्रदर्शन करके इंग्लैंड को अंततः विजय दिला करके 2-1 से जीत लिया उन्होंने मैच को। आगे हम और देख रहे हैं राजीव जी, कोलंबिया घाना, ऑस्ट्रेलिया का इजिप्ट के साथ मैच है, अर्जेंटीना का कोबो वर्डी जैसा देश जो कि छोटा टापू है वो कंटेस्ट करेगी एक विश्व चैंपियन से, जो हमारे पिछले वर्ल्ड कप के विश्व चैंपियन अर्जेंटीना के साथ में। काफी मुकाबले अच्छे होने वाले हैं,
3: और सबसे विश्वास करते हैं जी नवीन जी, सबसे अहम मुकाबला तो अभी सामने है जिसमें पुर्तगाल क्रोएशिया से भिड़ने वाला है।
4: पुर्तगाल क्रोएशिया, करेक्ट, आपने सही, मैं भी इस बात को भी अभी आपके सामने, और स्पेन और ऑस्ट्रिया भी है, पुर्तगाल क्रोएशिया, ये सारे जो मैचेस है ये काफी कंटेस्टेड होने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, हम लोग तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं बड़ी टीमों को देख के, हम बड़ी टीम के साथ देते हैं, बट यहाँ तो छोटी टीमें ऐसा उलट फेर कर रही है कि कुछ बोलना मुश्किल हो जा रहा है, हमारे बड़े बड़े विशेषज्ञ फेल हो जा रहे हैं। तो यही है खेल भावना, जो भी टीम पूरी खेल भावना से खेलती है निश्चित वो अपने लिए अपना स्थान बना पाती है।
3: जी नवीन जी, खासकर अगर हम पुर्तगाल और क्रोएशिया की मैच की बात करें तो दोनों टीम के जो दिग्गज प्लेयर है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं या लुका मैड्रिक के हैं क्रोएशिया के, दोनों का ये अंतिम हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप
4: हो सकता है अंतिम वर्ल्ड कप,
3: और दोनों अपने सपने को, और दोनों कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। लुका मॉड्रिक एक बार फाइनल जरूर खेले हैं बट वो फाइनल की ट्रॉफी अपने हाथ में नहीं उठा पाए हैं, तो ये क्या दोनों स्टार प्लेयर के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है पुर्तगाल और क्रोएशिया वाला?
4: पूरे विश्व की नजर इन दोनों खिलाड़ी पे रहेगी। खेलेगी जी उस पर्टिकुलर मैच में, जबकि ये पुर्तगाल को ऐसे खेलेगी। दोनों के लिए ये बेस्ट विन की भावना होनी चाहिए, द बेस्ट टीम विन, बट हाँ इन दोनों खिलाड़ियों को अपना भरपूर योगदान देना होगा तभी वो अपनी टीम को अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब होगी। अगर ये दोनों खिलाड़ी में कोई भी तरह की पाबंदी लग गई, मैंने खिलाड़ियों के माध्यम से खेल के दरमियान, क्योंकि निश्चित रूप से क्या होता है ना कि ओपोनेंट टीम एक स्टार खिलाड़ी को जरूर मार्क करता है, उनकी प्रतिभाओं को वो चाहता है कि वो दिखा ना पाए और हम उसको रोक के रखे, तो ये दोनों टीमों का प्रयास रहेगा। इनफैक्ट आपका पुर्तगाल भी इसी में प्रयास रहेगी और क्रोएशिया भी इसका प्रयास करेगी, लेकिन फिर वही बात है कि द बेस्ट टीम मस्ट विन।
3: और इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम्स में अगर हम बात करें तो फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस अपने काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है और केलियन मबाबे तो लग रहा है कि किसी के रोके नहीं रुकने वाले हैं और शानदार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की टीम को अगर आप देखते हैं तो कैसी टीम वो दिखती है किलियन मबाबे के साथ?
4: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही अच्छे प्रतिद्वंदी साबित होंगे आने वाले समय में। फ्रांस पूरे दिग्गज और स्टार खिलाड़ियों से भरा हुआ, खासकर जिसकी बात आपने की किलियन एम्बापे, पिछले वर्ल्ड कप में जो उन्होंने अपना जलवा नहीं दिखा पाया ना, वो इस वर्ल्ड कप में अपना पूरा जलवा बिखेरने को तैयार है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका जो गोल दागने की जो भूख है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मैचेस पर मैचेस मैं देख रहा हूँ। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि ये जो मैच होगा ना उनका ये बेस्ट होना चाहिए और मुझे विश्वास है स्पेन भी एक अच्छे प्रतिद्वंदी के रूप में, अच्छे टीम के रूप में खड़ी होगी और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाली होगी
3: जी। और इस टूर्नामेंट में अब तक अगर नवीन जी बात करें तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हुए और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाधिक गोलों का, अब तक 215 गोल हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में, क्या बात है फुटबॉल में इतने ज्यादा गोल अगर देखने को मिले तो?
4: राजीव जी आप एक चीज को गौर किए होंगे ना, इस वर्ल्ड कप में ना एक बड़ा सिद्धांत को बहुत ही मजबूती से लागू किया गया, जो कि इस वर्ष 2026-27 के फुटबॉल नियम पे जो लागू हुआ है ना वो है जितना हो सकता है वेस्टेज समय को कम किया जाए। और ये बहुत बड़ी जो मूव है ना वो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड और फीफा के द्वारा अप्लाई किया गया है। अक्सर लोग देखते हैं ना कि समय वेस्टेज टीम ज्यादा सोचती हम करें, और उस पे पाबंदी लगाने के लिए जो मूव, जो नियमों में जो अमेंडमेंट फीफा और आईएफएबी के द्वारा किया गया ना, उसका नतीजा है कि आप इतनी गोलों को देख पा रहे हैं। कुछ ऐसे नियम है ना राजीव जी, मैं अगर कभी मौका मिला तो विस्तार में इस नियम को आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में अगर बता दूं ना तो एक ही सिद्धांत है कि जितना हो सके उतना खेल हम खिलाड़ियों के द्वारा फील्ड में देखना चाहते हैं, ये फीफा और आईएफएबी

0: का पहला सोचा जो बहुत ही सराहनीय है और उसी का नतीजा है ना इन सारे चीजों को इतने गोलों को होते हुए हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। ये इस वर्ल्ड कप से लागू हुआ ये नियम, समय वेस्टेज को कम करना, थ्रो इन हो, गोलकीपर किक हो, सब्स्टिट्यूशन हो, ये तीन मुख्य जगह था जहां ना पूरी टीम अपने तकनीकी कारणों को लेकर के टाइम वेस्ट करती थी, लेकिन अब उनके लिए समय पाबंद दे दिया गया। इतना समय अगर आपने नहीं पाबंद लगाया तो आपके लिए आपको एक मिनट ग्राउंड के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये समस्या हो गई टीम के लिए कि हम जानबूझ के समय वेस्ट ना करें, हम जितना समय यूटिलाइज करें खेल में उतना समय देखें, जितना समय खेल का होगा उतना गोल देखने हमको मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सही में राजीव जी, ये फीफा और आईएफएफ बहुत अच्छा मूव लिया है और इस वर्ल्ड कप में लागू करके गोलों की संख्या को बढ़ाने में, खेल के समय को ज्यादा दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान साबित किए इन लोगों ने।
1: और नवीन जी, अगर हम टोटल गोल्स इंडिविजुअल की बात करें तो इससे पहले रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम था जिन्होंने 16 गोल वर्ल्ड कप में किए थे, जिसको लीग राउंड में ही लियोनेल मेसी ने पार कर दिया और अब वो 19 गोल के साथ सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर है।
0: जी जी जी।
1: मेसी का प्रदर्शन 39 साल के एज में भी उतना ही धारदार दिख रहा है, क्या लगता है?
0: बहुत बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये बस कहा जाए गॉड गिफ्ट उनके लिए है कि इतने अधिक उम्र में इतना अद्भुत प्रदर्शन, ये सराहनीय है। लियोनेल मेसी ऐसे ही वर्ल्ड के नामी प्रसिद्ध खिलाड़ी है और उनके बहुत सारे फैन फॉलोवर भी है, उनके बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके इतने मैंने कहा जाए पागलपंती में है, इतने जुनून उनके नाम पे है कि सचमुच उस चीज को प्रदर्शन कर रहे हैं और वो साबित कर रहे हैं कि उम्र कुछ भी मायने नहीं रखता, आपका जज्बा हो, आप में वो डेडिकेशन हो तो आप किसी भी मुकाम को हासिल करके एक नया आयाम जोड़ सकते हैं।
1: और नवीन जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमों ने शामिल किया गया, 48 टीमों को, और 48 टीमों में 8 स्पॉट एशिया के लिए दिया गया था, मगर भारत कोसों दूर है, क्या लगता है? भारत, अगर हम हमारे भारत के दर्शकों या उनके प्रशंसकों की बात करें, अपनी टीम को कब वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना, मतलब कब ये होगा कि जब हमारी टीम वर्ल्ड कप में प्रदर्शन करे या खेले?
0: अजय जी, इस सवाल का जवाब तो मैं इतना छोटे शब्दों में नहीं दे सकता आपको, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जब तक हमारा ग्रास रूट लेवल को हम मजबूत नहीं करेंगे, और सेकंड चीज है एज फ्रॉड जो होती है ना, जन्म तिथि, ये दो मुद्दा को अगर जब तक हम टाइटफुली और टैक्टफुली नहीं हैंडल करेंगे फेडरेशन के माध्यम से, तब तक हमारा वर्ल्ड कप का सपना सपना ही रह जाएगा। और उसकी बहुत सारे और भी बातें, लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म में इन सब बातों को मैं नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ, उचित नहीं है मुझे बोलना। बस ये दो चीज अगर ग्रास रूट लेवल और एज फ्रॉड जो हमारा हर जगह खेल के एरिया में देखा जाता है, वो जब तक हम पूरी तरह से डिलीट नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे, तब तक हमारा सपना, मैं बोला ना, सपना ही रह जाएगा।
1: नवीन जी, वापस हम लोग ट्रैक पर आते हैं और फीफा की बात करते हैं। राउंड ऑफ 32 के 6 मुकाबले और बचे हैं, 10 मुकाबले हो चुके हैं और उसके बाद राउंड ऑफ 16 की शुरुआत होगी। आपकी फेवरेट टीम्स, अगर हम बात करें टॉप 4 की टीम, तो किसको टॉप 4 में देखना चाहेंगे?
0: बहुत कठिन सवाल आपने किया है राजीव जी, सच में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे भी फेवरेट बोलने से इंग्लैंड है, ब्राजील है, उसके बाद स्पेन है, मोरक्को भी है, बट बहुत डिफिकल्ट बात आपने मुझे किया। हाँ, पर मैं अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं, वर्ल्ड रैंकिंग में, फीफा रैंकिंग में जिन लोगों का स्थान ऊपर 4 में है, तो निश्चित में अर्जेंटीना है, उसके बाद आपका स्पेन है, स्पेन के बाद आपका ब्राजील है, ब्राजील के बाद इंग्लैंड है। तो निश्चित रूप से अगर फीफा रैंकिंग के को मद्देनजर रखते मैं बोलूं तो ये 4 टॉप टीमें अभी भी अपने वर्ल्ड फीफा रैंकिंग में अपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पे है, और उसके पीछे ये सब भी जुड़े, मेक्सिको है, उसके बाद आपका पैराग्वे है, कनाडा भी, मोरक्को भी है। तो निश्चित रूप से ये टॉप की 4 टीम, अगर आप मुझे बोलने के लिए बात करें तो अर्जेंटीना को मैं सबसे पहला स्थान दूंगा, दूसरा स्थान स्पेन को दूंगा, तीसरा स्थान इंग्लैंड को दूंगा, और फिर चौथा स्थान मैं आपका ब्राजील को दूंगा, ताकि ये इन टीमों का अपना अलग रुतबा है, इन टीमों का अलग खेल शैली है, और इस खेल शैली को अगर ये सही तरह से प्रदर्शित कर पाए अपने खेल के मैदान में, तो ये दूसरे के लिए हमेशा मुसीबत का कारण बन सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपने अपना कीमती समय दिया और फीफा वर्ल्ड कप पर बात हमारे साथ की। उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह फिर से आप हमें समय दे और हम लोग फीफा वर्ल्ड कप पर आगे के मैचों पर चर्चा करेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 में अब भी काफी रोमांच बचा हुआ है, तो आप भी इन मैचों का आनंद उठाइए और आगे की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब फुटबॉल के बाद चलते हैं क्रिकेट की ओर, जहां महिलाओं के ICC T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बादशाहत कायम रखी और वेस्टइंडीज को आसानी से 8 विकेट से हराकर फाइनल में रिकॉर्ड 8वीं बार अपना स्थान पक्का कर लिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और वेस्टइंडीज की लड़कियों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वेस्टइंडीज की शुरुआत हालांकि ठीक ठाक रही और पहले विकेट के लिए उन्होंने 47 रनों की साझेदारी की, पर फिर उनके विकेटों का पतन लगातार जारी रहा और उनकी आधी टीम मात्र 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हालांकि अंत में डियंड्रा डॉटिन ने थोड़ी तूफानी पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 125 रनों के संतोषजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बार फिर से एस्ले गार्डनर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों का शिकार किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तेज तर्रार शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया की ओपनर बेथ मुनी ने एक बार फिर शानदार नाबाद 61 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दिलाई, तो वहीं एश्ले गार्डनर ने गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल दिखाया और मात्र 20 गेंद में 35 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से कोई भी गेंदबाज प्रभावित नहीं किया और मैच आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने अपने पक्ष में कर लिया। इस मैच में एश्ले गार्डनर को शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाज बेथ मुनी ने कहा कि
3: Yeah, it's much better way to be sitting in a press conference after a semi-final, that's for sure. But yeah, it's been well documented. We haven't quite got over the line in those big games in the past. So even chasing 125, it's never over till it's over. So you want to make real sure of it. And thankfully, we were able to do that both with the ball and the bat. Not specifically before this game, but certainly spoken about, you know, in the lead up to this tournament and how we can manage ourselves better in big games and in pressure moments. So, you know, individually and collectively, we've done a lot of work on how to manage that. How best to present ourselves and show our skills when it matters. And fortunately today, pretty much everyone nailed their role. And yeah, we came away with what we came here to do, and that was to be at the final at Lords on Sunday. Yeah, we've discussed that's a pretty important phase of the game to try and attack. And obviously with George Vol at the top of the order, it makes it pretty easy to do that. But I guess from a personal point of view, I've certainly got the control and the skills to be able to take the game on a little bit earlier. And played a lot of cricket and have a lot of data behind me to back up the fact that I can make good decisions and know what I'm doing every now and then. It's not going to come off all the time, but I think that's the way forward in T20 cricket is to really attack the power play if you can and adjust where you need to along the way. But certainly batting with Elisa Healy for a long time and now batting with George Vol, it does make it easier to get ahead of the rate, whether you're chasing a lower total or a big one. Yeah, she's been a critical player for us for a long period of time, Ash, and you know, she obviously batted beautifully against India at Lords the other day. So I think as she spoke about in the post-match, she gets a lot of confidence from that. And I think we saw that today with the ball. She bowled beautifully and took wickets at critical times. So we know the threat that she poses to other teams and we're very lucky to have her at our disposal in our team. And certainly going into the pointy end of the competition, we, you know, it's always good to have all your players in good form.
2: वही मैच हारने के बाद वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज ने अपने टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए बोली कि
4: Yeah, I don't actually know any more information. I just know she had a medical emergency at the moment. Well, at the time, I think what's really important is the way she was able to come back and come out. She showed a lot of heart and fight by playing the way she did after that happened. And it was obviously a bit worrying for us at the time, but at the same time, tried to put that behind us and go out there and get the job done. We just, for the entire tournament, I feel like we haven't had too many individual standout performances. I think we had Shemaine in that first game alongside Aaliyah, and we had Chanel score 50 in that match against England. But I think when we look overall as a group, we haven't had enough players really put their hands up and take control of a game. And in T20 cricket, you always need someone stepping up and putting down good performances. And I think that's probably what we lack, not only today, but the entire tournament. I think firstly, head up. We obviously all disappointed, but I keep reiterating all the time, I think the fact that we've made it to this stage of the competition with lack of performances from a lot of our big players speaks volumes to the supporting cast that we have in the team, and speaks volumes to those like Aaliyah Aline and maybe a Jazira Claxton and a Janelia Glasgow. And things used to look a lot different once upon a time, and I certainly feel like last World Cup or the one before that, if I had the form that I did with the bat and the Andy Dalton did, we would not be in a semi-final right now. So I think we can take a lot of pride from that, knowing that obviously myself and DeAndre and Steph, we are part of the team and we are a bit let down, but at the same time, you can be so proud of the way that as a unit, we were still able to get over the line in a lot of games.
2: अब महिलाओं के T20 World Cup में दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा और जो भी टीम यह मैच जीतेगी उसका सामना फाइनल में 5 जुलाई को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। दोस्तों अब थोड़ी बातें भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे की। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 5 T20 और 3 एक दिवसीय मैच खेलने इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां पहला T20 मैच कल बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश होने से पहले भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाई। भारत की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68, अभिषेक शर्मा ने 59 और शिवम दुबे ने ताबातोड़ 42 रनों की पारी खेली। एक बार फिर से संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा का बल्ला शांत रहा और ये सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की तरफ से शाकिब महमूद ने शानदार 3 विकेट अपने नाम किए। मैच के पारी अंतराल के दौरान एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दी, जिसके कारण मैच को रद्द करना पड़ा। अब दूसरा T20 मैच 4 जुलाई यानी शनिवार को स्टेटफोर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों क्रिकेट के बाद अब चलते हैं हॉकी की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए FIH हॉकी प्रो लीग के रिवर्स मुकाबले में इंग्लैंड को निर्धारित समय तक 0-0 की बराबरी पर रोकने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। यह मुकाबला रविवार को लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेला गया। भारत की ओर से पेनल्टी शूटआउट में अभिषेक, शिलानंद लकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल किए, जबकि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच की शुरुआत इंग्लैंड ने आक्रामक अंदाज में की और सैम वार्ड ने यशदीप सिंह से पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। भारतीय गोलकीपर मोहित शशि कुमार ने शानदार दोहरे बचाव के साथ टीम को शुरुआती झटके से बचाया। इसके बाद उन्होंने वार्ड और सैंडफोर्ड के प्रयासों को भी विफल कर दिया। पहले क्वार्टर में भारत का सबसे अच्छा मौका अभिषेक के पास आया, लेकिन इंग्लैंड का दबदबा बना रहा। मोहित की तेज प्रतिक्रियाओं और भारतीय रक्षा पंक्ति के अनुशासित प्रदर्शन की बदौलत पहला क्वार्टर गोल रहित समाप्त हुआ। तीसरे क्वार्टर के अंतिम चरण में मैच का अहम मोड़ तब आया जब यशदीप सिंह पर हेनरी क्रॉफ्ट के खिलाफ फाउल का आरोप लगाते हुए इंग्लैंड को पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया। भारत ने तुरंत वीडियो रेफरल लिया और रिप्ले में स्पष्ट हुआ कि चुनौती पूरी तरह वैध थी। इसके बाद अंपायर ने अपना फैसला पलट दिया। इस घटनाक्रम के बाद इंग्लैंड के निकोलस पार्क को ग्रीन कार्ड दिखाया गया। इसके बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने उसे भी बचा लिया। क्वार्टर के अंतिम क्षणों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके चलते दिलप्रीत सिंह को ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन दोनों टीमें अंतिम क्वार्टर में भी 0-0 की बराबरी पर रही। पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम ने शानदार संयम का परिचय देते हुए 3-2 से जीत दर्ज की। यह जीत भारतीय टीम को मजबूत रक्षा, दबाव में संयम और निर्णायक क्षणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण रही। FIH हॉकी प्रो लीग में यह भारत का हॉकी विश्व कप से पहले अंतिम मुकाबला था और इस जीत ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया। दोस्तों हॉकी के बाद अब चलते हैं लॉन टेनिस की तरफ, जहां विंबलडन के मुकाबले खेले जा रहे हैं। 4 साल के बाद विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ जब मंगलवार रात अमेरिका की दिग्गज सेरेना विलियम्स कोर्ट पर उतरी तो सभी को उम्मीद थी कि वह 2004 में मार्टिना नवरातिलोवा के उसी तरह के इतिहास को दोहराएंगी, जब 47 वर्षीय मार्टिना ऑल इंग्लैंड क्लब में सिंगल्स मैच जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी थी। लेकिन मार्टिना के बाद दूसरी सबसे उम्रदराज महिला के रूप में ऐसा करने से 44 वर्षीय सेरेना चूक गई और ऑस्ट्रेलिया की 20 वर्षीय माया जॉइंट आखिरकार 6-3, 6-7, 6-3 के आंकड़ों के साथ उन पर भारी पड़ी। हालांकि यह आंकड़े यह भी बयां कर रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव और खेल के अभ्यास में रही निरंतरता की कमी के बावजूद सेरेना ने उम्मीद से कहीं बढ़कर शानदार खेल दिखाया और यही कारण रहा कि मुकाबले के अंत तक उन्हें दर्शकों का वही भरपूर समर्थन मिलता रहा जिसकी वह हकदार रही। वहीं 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविक ने अपने 21वें विंबलडन अभियान की शानदार शुरुआत में मंगलवार को पहले

0: ऐसा नहीं हुआ। तीसरे सेट की शुरुआत में छत बंद होने के कारण सर्बियाई खिलाड़ी को लगातार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। कंधे की चोट के कारण साल का अपना केवल पांचवा टूर्नामेंट खेल रहे जोकोविक ने तीसरे सेट के आखिर में वु की सर्विस तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सर्बियाई खिलाड़ी ने तीसरा सेट जीतने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया और फिर चौथे सेट के अहम मौकों पर बेहतरीन खेल दिखाते हुए विंबलडन के पहले राउंड में अपना रिकॉर्ड 21-0 कर लिया। वहीं अमेरिका के स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गफ ने महिला सिंगल्स के अपने पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की तमारा कोरपाच को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से आसानी से हरा दिया। 2023 की यूएस ओपन चैंपियन और 2025 की फ्रेंच ओपन चैंपियन गफ को इस मुकाबले में बिल्कुल भी संघर्ष का सामना करना नहीं पड़ा। हालांकि फ्रेंच ओपन चैंपियन और पांचवी वरीयता प्राप्त मीरा आंद्रीवा को मैग्डा लिनेट को 7-5, 6-4 से हराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं गत विजेता यानिक सिनर ने एक ही मैच में दो बार वापसी करते हुए 5 सेट तक खींचे मुकाबले में 50वीं रैंक वाले मियोमीर केचमानेविक को हराकर अपने विंबलडन अभियान की जोरदार शुरुआत की। दोस्तों अब चलते चलते थोड़ी बातें 65वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। कलिंगा स्टेडियम में खेली गई 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन जेवलिन थ्रो स्पर्धा में रोहित यादव ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस बार भारतीय खिलाड़ी रोहित यादव की सीरीज भी काफी मजबूत रही है क्योंकि उन्होंने 77.71 मीटर, 77.63 मीटर, एक फाउल, 77.51 मीटर, 79.40 मीटर और फिर अंतिम प्रयास में 87.05 मीटर का थ्रो किया है। इसी बीच उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह अपनी लय पकड़ने में संघर्ष कर रहे थे लेकिन आखिरी थ्रो में उन्हें सही रिदम मिला और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही हमारा आज का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम की प्रस्तुति से मुझे यानी राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी।
2: साप्ताहिक खेल पत्रिका खेल खिलाड़ी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत चलते चलते। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने, आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की हैं।

जीरो इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभय जोधपुरकर और साथियों की आवाज़ों में। बोल थे इरशाद कामिल के, धुन बनाई थी अजय अतुल ने। अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में सईद कादरी का लिखा, मिथुन का संगीतबद्ध किया गीत

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कबीर सिंह का ये गीत। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, When the going gets tough, the tough get going। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले

0: 18 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवर्जन और

0: निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पे CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक

0: राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुँचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है?
2: हर्ष जी देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाए। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी,
2: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
2: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाएगा पर डोप मोर को, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉक मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
2: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स है, तो ये एक जो पोन्स हैं, तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरीगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरीगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि वो जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं होती है। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
2: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं
1: जी।
2: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा

0: तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम ले पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेकडैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है, वो सब हुआ। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है, कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है, जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम, मैं कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरीगेशन की जो नई चीजें, नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरीगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर हो, जो उत्पादकता बेहतर हो। जो ड्राई लैंड एरियाज है, जैसे राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर
1: जी,
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे जो है, वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में, वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था, वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहाँ जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है, उसमें ये काफी मददगार भी है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसीजन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी, जहाँ बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: अरविंद जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहां किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर, विशेष रूप से अगर कहें, छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी हो, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लोग मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स को कैसे रिचार्ज करता जा सकता है
1: जी।
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान हैं हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान हैं उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज़्यादा फसल करके ज़्यादा आय हासिल कर सकें, क्योंकि स्कीम

0: उस पर बड़े पैमाने पर अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है
1: जी। और हरवीर जी, यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित।

दम लगा के हैशा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में। बोल थे वरुण ग्रोवर के, धुन बनाई थी अनु मलिक ने। झूम बराबर झूम, इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। बोल हैं गुलजार के, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं तक। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत द ओवल लंदन में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: White Hodge in particular is in the form of her life.
1: Yeah, absolutely. She's been on a brilliant roll since the beginning of the tournament. I think everyone has really shown their skills in different phases. Just be about sticking together and being composed in that crucial moment.
0: I guess you don't mind being reminded that knockout cricket has been your nemesis, it's been your area of concern. Do you feel you're in a better place now to cope with this pressure?
1: Yeah, I think so. Everyone's feeling really confident in what they've done and this group as well. So, we're in a good spot and hopefully we can perform out there today.
0: Go well this evening.
1: Thank you.
0: So the news from the toss, South Africa have won it, they're having a bowl.
2: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. नाउ द थिंग दैट नासिर हुसैन वाज कांस्टेंटली अल्यूडिंग टू एट टॉस ख्याति वाज ही 2023 एंड 2025 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 20 ओवर्स एंड 50 ओवर्स एडिशंस व्हेन इंग्लैंड वर नॉक्ड आउट बाय साउथ अफ्रीका इन दिस वेरी स्टेज.
3: इज डेफिनेटली दे आर नोन टू अपसेटिंग एनी टूर्नामेंट एनी टीम. And their form is yet to come. And I mean, especially if you talk about Walwart, she's yet to give her best. I guess, they can do anything. And any team can do anything in T20 cricket. Having said that, this English team, it looks very balanced at the moment. And they're giving their best. Their batters are contributing really well. Their bowlers are contributing really well. They look to be a very balanced side. So let's see who plays well today.
4: जी, और कंसिस्टेंसी जो है वो इंग्लैंड की इस पूरे टूर्नामेंट में एक मजबूत पक्ष उसका रहा है. और ऐसे में जिशान, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला कितना कांटे का, कितना नजदीकी हो सकता है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा था.
5: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छा मैच होएगा. और खासकर हमारे रमन साहब ने साफ साफ कहा है इस बात को, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था. तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि ये अच्छा मैच होने वाला है. ख़ासकर जहाँ तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो प्रीवियस और जो पास्ट चीज़ें रही हैं उनके आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए. फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, खासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं. एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका पेस बॉलर्स की खासकर. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. अच्छे बैट्समैन, जो बैट्समैन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो खासकर जो पेस बॉलिंग जो कर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम की, तो मुझे वो एक वॉर जो नज़र आना है वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
2: सो बैटल विद इन द वॉर टू लुक अहेड टू. नाउ राजा, वी हैव सीन विद इंग्लैंड द वे दे आर फंक्शनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. चार्ली डीन वाज कैप्टनिंग इन द गेम्स इन बिटवीन व्हेन सिव ब्रंट वाज इंजर्ड. Every individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
6: I think that's the hallmark of a good team, Mega. And any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get a first bowl, I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa. And everything that is past, you know, you've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20 over format and the 50 over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side. I think England will have the edge in this game.
4: Khyati, home condition aur gharelu support bhi hoga England ke paksh mein. To ye unke liye positive ho sakta hai ya unke upar pressure aa sakta hai iski wajah se?
3: Abhi tak to jaisa dekhne ko mil raha hai is tournament mein, unko support hi mil raha hai, and they are very well aware of the conditions. And jis tarike se wo khel rahe hain unko pata hai ki kis tarike se hame kab hame gear second gear lagana hai, kaise kab defensive hona hai. To I think they are getting good support from the crowd as well, and as well as they are well aware of about the conditions.
2: Yeah.

0: ईशान, खास करके टॉप ऑर्डर ने काफी अतिशी बल्लेबाजी की है। अब तक टॉप थ्री का जो स्कोरिंग रेट रहा है 8.8 का, अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए उनके पास में जो जो उनके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो हॉज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप के सीरीज़ में, तो एक वो ज़रूर से नज़र आना होएगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करती हैं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही है मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है, जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं। और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है। उनके पास ज़रूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है, मोरल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ख़ासकर जो जो वुमेंस क्रिकेट के टीम होती है उसको एक बहुत ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की, वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग करनी है उन्हें। शुरू के 6 ओवर के जो मैचेस होंगे उस 6 ओवर के मैचेस में उनको ज़रूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर। अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फ़ायदेमंद होएगा।
2: और आज बैटिंग ही तो रही है इंग्लैंड की, जिसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप के पांचों मैच जीतने में सफल रही है। दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मिला जुला प्रदर्शन रहा है, किसी में किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया, किसी और मैच में किसी और खिलाड़ी ने बढ़िया किया, तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने भी जीते। मनोवैज्ञानिक रूप से इस मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर स्थिति में होगी?
3: इंग्लैंड होगी, क्योंकि ओवरऑल कमांडिंग परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड के ज़्यादा बेहतर रहे। अगर आप पिछले मैच भी देखें जो बांग्लादेश के साथ था साउथ अफ्रीका का, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं लग रहा था कि आसानी से जीत लेंगे वो मैच, लड़खड़ा गई थी टीम, और वहाँ से उठ के आना जीतना अच्छी बात है, बट आई थिंक इंग्लैंड के पास है जो वॉट एवर एज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज विथ इंग्लैंड, और ख़ास करके क्योंकि इस पिच पे आज मैच हो चुका है ऑलरेडी, और जब आप और क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज विल कम इन टू प्ले एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली गिवन देम दैट चांस। अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए हर चीज़ सही बैठ रहा है और आज वो मैच इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है।
0: One of the players contributing to that edge is Dani Vyat-Hodge, and we've seen in her case took a paternity break, and in fact didn't play a whole lot of games in the build-up. The games that she played, she struggled, but brought her A game to the World Cup.
4: Yeah, I mean she's a very good batter, and she always give a very good start to the team, and she has given she's proved in this tournament as well. But if you see that. There are other batters also, because she knows that we have deep batting lineup. So that is the reason she is able to give those starts to the team. And if you lay a good foundation, definitely, I mean, they can find a very good score in this match.
2: Jishan, इतिहास का किसी मैच में कितना बड़ा योगदान रहता है? क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसमें भी साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, तो वो क्या साइकोलॉजिकल एज होगा उनके पास इस मैच में? इंग्लैंड की टीम प्रेशर में होगी?
1: ज़रूर, थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि हम 2020 और 50 दोनों में साउथ अफ्रीका से अगर हारे हुए हैं तो ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए आजकल जो क्रिकेट जो हो गया इतना प्रोफेशनल हो गया है और इतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं जो भी क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो खासकर होते हैं, उनको वो पीछे की सारी चीज़ें जो है ना वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। आजकल जो जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो सपोर्ट स्टाफ इस तरह से उनको तैयार करता है ग्राउंड में जाने के पहले कि उनको वो पुरानी सारी चीज़ें, वो अपनी फैमिली और वो सारी चीज़ों को भूल करके ग्राउंड के अंदर में जाते हैं, तो वो जो मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि वो एक प्रेशर थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे ख़ासकर अभी जो इनके परफॉर्मेंस मैं देखता चला आ रहा हूँ इंग्लैंड की टीम का, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पुरानी जो बातें हैं वो चीज़ें कहीं थोड़ी होंगी 1-2%, लेकिन उन चीज़ों का कोई असर यहाँ नहीं होएगा। और इंग्लैंड नो डाउट मुझे जहाँ तक

0: यकीन है कि इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस आज करेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन पहले से कर देना इस मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकता कभी भी। हाँ ये ज़रूर है कि मैं कह ये समझता हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक मैच होते हैं T20 के, और आखिरी वक्त में आखिरी बॉल पे भी कुछ डिसीजन बदल जाते हैं। जहाँ तक इस मैच की बात है, साउथ अफ्रीका और उनकी बात अगर आपस में करें आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के सपोर्ट में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ग्राउंड उनका है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उनके हैं, उनकी फैमिली के लोग होंगे आसपास में, उनके फ्रेंड्स होंगे सारे, तो वो जो एक सपोर्ट होता है बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और परफॉर्मेंस भी जो उनका है, वो परफॉर्मेंस ये शो कर रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो है आज के दिन में बेहतर नज़र आ रही है बनिस्बत के साउथ अफ्रीका के। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट आखिरी बॉल तक, और वो भी T20 है तो वो आखिरी बॉल तक होता है, तो हमें वो इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन बेहतर तरीके से इस मैच को लेकर के जाता है।
1: और श्रोता किस टीम के समर्थन में है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। रिमाइंड यू, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आर नंबर 011-234-210-84 and 85। लेट्स लिसन इन टू द फर्स्ट कॉलर। नमस्कार।
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम रवि जवाले है।
1: जी रवि, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी?
2: हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका आज मैच जीतेगी, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी गेंदबाजी ना अभयंदा काका वो तैयार करेगी और फाइनल में पहुंचेगी जी। और मैं एक और जानना चाहता हूँ मैम
1: जी।
2: जी हाँ, कि आज की 11 बाजी और गवर्नमेंट तरफ से मेरा निवेदन ये है कि वो एम्पायर के बारे में भी बताया करके कौन कौन से एम्पायर है जी।
1: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए और आपकी टिप्पणी के लिए। वेल आवर लिसनर देयर सर्टेनली नॉट प्लेइंग इट सेफ, नॉट प्लेइंग इट विद अ स्ट्रेट बैट, इज एम्फेटिकली डिक्लेयर्ड दैट साउथ अफ्रीका विल विन इट कर्टसी आया बोंगा खाका। एंड वेल साउथ अफ्रीका डू हैव अ ग्रेट बोलिंग अटैक, पर्टिकुलरली द पेस अटैक। 25 विकेट्स दैट द पेसर्स हैव पिक्ड अप इज द हाईएस्ट एज फार इन द टूर्नामेंट राजा।
3: But you have to look at the teams that they played. I think apart from India, the kind of competition that they would have gotten, picking up wickets against Bangladesh, I'm not watering down their efforts, but all that doesn't matter because you're up against a superior team. You're up against the home team now. Whatever you've done in the past has brought you here, but you've got to perform at your best now, Megha. And that can happen only when they bowl on the spot today and keep the English batters quiet, earn some wickets early on with the new ball, and that is when all the effort that they've put in so far in the tournament will bear fruit. They'll have to play very good cricket to beat England.
4: Aur Megha, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि कमेंटेटर जो है वो अंपायरों के नाम बताएं कि आज के मैच में कौन कौन से अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, तो आप बता दें।
1: जी बिल्कुल, एलोइस शेरिडन, जैकलीन विलियम्स हैं दो अंपायर, और टीवी अंपायर हैं क्लेयर पोलोसैक, और रिजर्व अंपायर हैं कैंडेस या बोडे।
4: और अब सवाल ख्याति से कि दोनों टीमों की कप्तानों पर अगर नजर डालते हैं तो इंग्लैंड के कप्तान नेट सिवरब्रंट फिट होने के बाद इस मैच में वापसी कर रही हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फॉर्ट फॉर्म के लिए संघर्ष कर रही हैं पूरे टूर्नामेंट में, और सेमीफाइनल जैसा अहम मुकाबला है। दोनों की कैप्टेंसी के साथ साथ बल्ले की कितनी बड़ी भूमिका इस सेमीफाइनल मैच में रहने वाली है?
5: देखिए, अगर आप इनका पुराना अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इन दोनों का मिडल नेम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे बहुत अहम माना जाएगा। एंड जिनका मिडल नेम ही कंसिस्टेंसी है तो आई एम श्योर दैट दे विल prove their battle and metal and definitely Wolvert ka, as I said earlier also, uska bhi her best is yet to come and I think it's a big game for their team. Definitely she will show a good game today.
4: Aur hamare is karyakram mein char chand lagate hain hamare shrota, ek shrota hamare sath jud gaye hain phone line par. Ji swagat hai aapka.
6: Namaskar sir.
4: Naam bataiye apna.
6: सर मैं विश्वप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी से।
4: जी अपना सवाल और जो भी टिप्पणी आपकी वो कृपया बताएं।
6: सर मेरा प्रश्न ये है कि आज जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का, मैं चाहता हूँ कि आज दक्षिण अफ्रीका जीते क्योंकि इनका लक हमेशा इनके खिलाफ जाता है, आज इनको ईश्वर जिताए। और मेरा ये प्रश्न है आपको कि आज क्या दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव है क्या?
4: जी प्लेइंग 11 की बात करें

0: तो बदलाव तो है कुछ दोनों ही टीमों में, और हम आपको बताते हैं कि क्या बदलाव है। मेघा बताएं कृपया।
1: बिकॉज द कैप्टन कम्स बैक, नैट सिवरब्रंट कम्स बैक फॉर इंग्लैंड, सो सोफिया डंकले हैज हैड टू मेक वे फॉर हर, सो दैट्स द चेंज इन द इंग्लैंड playing 11. And Sophia Dunkley had been featuring in the games where we didn't see skipper Nat Siverbrunt around. And talking about South Africa, they have gone for one change as well, and Sunil Loos is come in for Dane van Niekerk.
0: Ji, aur Raja, agar is match ki hum baat kare fir se ek bar fir, to इंग्लैंड के अभी तक के अभियान में जो है वो कंसिस्टेंसी लगातार दिखी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीता, भारत के खिलाफ भी कांटे का उनका मुकाबला रहा, तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है?
2: ये दो मैचेस उनको तैयार भी किए होंगे, एक टफ मैच जो सेमीफाइनल होता है उसके लिए शायद इंडिया का मैच या बांग्लादेश का मैच उनको तैयारी में मदद की होगी, लेकिन उसमें से कितना सीख लिए हैं और फिर आज उसमें सुधार कितना ला सकते हैं अपने गेम में, खास करके उनके बल्लेबाजी में। दे हैव टेकन अ चांस पहले गेंदबाजी करके, उन्हें लगता है कि इंग्लैंड को अगर कम स्कोर में रोक लें तो उनके बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं फिर यू कम अंडर प्रेशर टू विन द मैच टू डिफेंड द स्कोर, तो उनके जो बल्लेबाज है वो मैच जिताना चाहिए उनको। क्या वो आज हो सकता है ये देखने वाली बात है। इंग्लैंड के पास सारे वो पत्ते हैं, दे हैव गॉट इनफ एंड मोर ट्रम्प कार्ड्स विद देम, लेकिन साउथ अफ्रीका को चाहिए कि अपने बल्लेबाज आज कुछ करिश्मा कर दिखाएं।
1: And Khyati, talking about South Africa's bowling, we talked about the 25 wickets that the Pacers have taken, including Shabnam Ismail, who reversed her retirement to come back and play in the T20 World Cup. She's an experienced campaigner. How would you assess her comeback thus far?
3: Definitely, I mean, it's a very good decision, I would say, because their team is at their best at the moment, and there are chances they can lift the trophy as well. And because if you have seen their past performances, they have done really well, and it's a good decision because now the team looks very balanced and packed. And the three bowlers like Ismail Khan and the other as well, they're doing really well, and it's a very good balanced pacing attack. And I'm sure that she will definitely put an effort to lift this trophy for her team.
0: आज जिशान फिर से जो है बल्लेबाजी करने का मौका पहले इंग्लैंड की टीम को मिला है। टॉप ऑर्डर उनका बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है, और एक तरह से माना जा रहा है कि इंग्लैंड के टॉप थ्री बल्लेबाज और उधर साउथ अफ्रीका की जो फास्ट गेंदबाजी है उनके बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में इंग्लैंड क्या स्कोर करे कि थोड़ा सा अपने आप को कम्फर्टेबल स्थिति में पाए?
4: मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि जो आज है वो बेसिकली एक तरह से एक वॉर है जो पेस बॉलर्स उनके हैं साउथ अफ्रीका वुमेंस टीम के और जो इंग्लैंड टीम के जो बैटर्स हैं उनके बीच में एक वॉर है। मैं ये फिर से ये कहता हूँ कि शुरू का 6 ओवर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है T20 के मैचेस के लिए, दोनों के लिए, एक पेस बॉलर्स के लिए जो दूसरी टीम के हैं और जो बैटिंग जो करने आएंगे उनके लिए। तो ये खासकर बहुत ज़रूरी है कि जो खासकर वो जो उनके बैटर हैं उनके बारे में ये ज़रूर है कि उन्होंने 100 भी किया था लास्ट किसी मैच में हॉज ने, तो हॉज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो एक लंबा अगर वो खेलने की कोशिश करें, लाइक अगर वो ये सोच के चलें कि हम शुरू के 6 ओवर में 50-60 बना दें और आउट हो जाएं, फिर वो प्रॉब्लम होएगी, इंग्लैंड टीम को बनना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये होएगा मेरे ख्याल से, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो भी सपोर्ट स्टाफ हैं उन्होंने बनाया होगा कि शुरू के 6 ओवर में जो इनके पेस बॉलर्स हैं उसको कैसे फेस करना है, कम विकेट गिराना है, आप आगे ले कर टीम के चलेंगे। अगर ऐसा करने में वो सक्सेस होती हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लंबा स्कोर इंग्लैंड खड़ा करेंगे पेस बॉलर्स के अगेंस्ट में, और बाद में टीम जो उन इंग्लैंड टीम के पास में स्पिनर्स हैं कुछ, मैंने देखा है कि काफ़ी विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने और इंग्लैंड को जिताने में उनकी बहुत मदद रही है। तो मेरे ख्याल से ये शुरू का जो 6 ओवर का मैच है इंग्लैंड के लिए खासकर और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए खासकर ये डिसाइड करेगा। फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी बैटिंग करने आता है या जो बॉलिंग करता है दोनों के लिए, कि वो कैसे कम से कम स्कोर में इन्हें रखें

0: और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने की कोशिश करते हैं। जो इसमें कामयाब होंगे वो ऊपर की तरफ ज़रूर से आगे की तरफ वो टीम जो है बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये सोच करके आई होगी कि हमें शुरू के छः ओवर में अगर 40-45 भी रन बनते हैं तो वो उतना बनाएं, विकेट ना गिरने दें, सो डेट के बाद के जो ओवर्स होंगे उसमें जब बॉलर कोई दूसरे नए आएंगे उनकी तरफ से बॉल डालने के लिए तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आगे हिट करके और 150-160 के आसपास स्कोर अगर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, टारगेट होएगा तो वो बेहतर होगा इंग्लैंड के लिए। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट जो सीरीज़ में देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूर है, क्रिकेट है, आपको थोड़ी सेंसेबल बैटिंग करनी पड़ेगी आज के दिन में, इसलिए कि ये बड़ा मैच है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में अगर आप थोड़े से भी लैक किया, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने आपको लेकर के आएंगे तो भी मुश्किल होएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना के आएंगे और ज़रूर से एक ऐसा स्कोर खड़ा करेंगे जो अफ्रीका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होएगी।
1: और राजा, फील्डिंग की आज कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। साउथ अफ्रीका का जो स्टैंडर्ड होता है फील्डिंग में वो इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखा नहीं है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी आज?
2: बहुत बड़ी होगी। कोई भी मैच में, क्रिकेट का कोई भी मैच, मोहल्ले का मैच हो या ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हो T20 का, फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद भारत के टीम को बहुत बुरी तरीके से पता चला होगा इस टूर्नामेंट में कि देयर फील्डिंग वाज नॉट अप टू स्क्रैच, और क्योंकि साउथ अफ्रीका कैन सेव एटलीस्ट 10 or 15 रन, देयर विल बी अ गुड एडवांटेज फॉर देम। काफ़ी फिट टीम है एंड आई थिंक इट गोइंग टू हेल्प देम। लेकिन मैच तो इंग्लैंड की ओर ही जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, पहले 6 ओवर में पता चल जाएगा, बट आई थिंक इंग्लैंड इज विल हैज द कैन कॉल द शॉट्स इन दिस गेम।
3: Albeit subtly, we've had predictions from our experts, but thanks a lot for your analysis as well. Thank you, Dharmendra. So, it is going to be England's formidable top order that will be up against the pace attack that has picked up 25 wickets for South Africa. A battle really to watch out for in this first innings as we wrap up our show here at First Ball 20 with the two England openers, Danny Wyatt-Hodge and Amy Jones, heading to the centre.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का T20 महिला विश्व कप का सेमीफाइनल नंबर 2 यानी दूसरा सेमीफाइनल आमने सामने होने वाली टीमें इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका और मेजबान है इंग्लैंड और वेल्स में इस बार के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा आप प्रोग्राम में भी सुन रहे थे इस हमारे विवरण से पहले कि पलड़ा इंग्लैंड का भारी नजर आ रहा है कागज पर, लेकिन देखना यह होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका जो कि पिछले लगातार 2-3 वर्षों से ICC टूर्नामेंट्स के महिला वर्ग में फाइनल में पहुंचते रहे हैं, ये अलग बात है कि खिताब उनसे छिटक गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी काबिलियत पर किसी तरीके का शक किसी को नहीं है। और टॉस जीता गया था दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। दोनों टीमों में एक एक परिवर्तन है, एक फोर्स्ड चेंज है, एक टैक्टिकल चेंज है। टैक्टिकल चेंज माना गया आज साउथ अफ्रीका की टीम में, कप्तान लॉरा वॉलवर्ट का कहना था कि सुने लूस को उन्होंने शामिल किया है डेन वॉल नीलकर की जगह, और इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह नेट सिवर ब्रंट का आगमन हुआ है जो 3 मैचेस नहीं खेल पाई थी काफ इंजरी की वजह से, लेकिन आज के मैच में न केवल वो टीम का नेतृत्व कर रही हैं बल्कि एक बहुत बड़े अहम मुकाबले से पहले उनका फिट होना इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट समझा जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं शिवेंद्र चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए मेरे साथ ही दर्पण टिकिया। दर्पण नमस्कार, स्वागत आपका।
2: Thank you so much, Shivendra. We are all set for the action to begin at the Oval. It is England versus South Africa. Of course, we are joined by Sunil Dhige, our scorer, who will be keeping us updated so that we can bring you the score as and when it gets updated. And of course, we have Jatin Sood with us, who will be bringing some intriguing stats around the game. England versus South Africa. The winner plays in the grand finale of ICC Women's T20 World Cup 2026. They will face off against Australia. And for both these teams, it has been a story of weight. It has been

0: भंडारण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं

हित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगर वो टॉस जीती तो क्या करती, तो उनका भी ये कहना था कि वो भी गेंदबाजी के लिए ही जाती हैं। तो ये जो ओवल का मैदान है, इसके बारे में कहा यह जा रहा है, देखा भी ये जा रहा है कि जो टीम चेज करती है, सफलता ज़्यादातर उनके नाम पर ही लिखी जाती है, और शायद वो एक टैक्टिकल पॉइंट भी बन चुका है। इस बार मिडल और लेग स्टंप की लाइन में गेंद थी, बैक फुट पर जाकर धीमे से पुश किया है, मिड ऑन की दिशा में एक रन मिलेगा। एक ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।